يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء

0: अगर हिम्मत है तो इस असेंबली में रेजोल्यूशन लाओ, नहीं है हिम्मत किसी में, इंशाल्लाह ताला हम सिंध के इलेक्टेड लोग, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स, जब तक एक भी जिंदा है ना, ये सिंध सूबा जो सदियों से है, जिसको अंग्रेजों ने कोशिश की तोड़ने की, वापस सिंध के लोग इस सूबे को इकट्ठे किए और सिंध के लोगों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसी हाउस ने पास की। तो मेहरबानी करके किसी के अगर खाम ख्याल में कुछ है तो वो निकाले, कोई कोर्ट की फैसला नहीं कर सकती, कोई जलसे में बैठ के तकरीर करके ये फैसला नहीं कर सकता, कोई टीवी में बैठ के सेमिनार करा के ये फैसला नहीं कर सकता, फैसला इस हाउस में होगा, डिबेट इस हाउस में होगी, फैसला ये हाउस करेगा और इंशाल्लाह ताला ऐसा फैसला करेगा कि जो बाकी आवाजें चल रही है ना उनके सब मुंह बंद करेंगे हम इंशाल्लाह। क्या तालियां है कि ये सूबा हमेशा एक रहेगा सिंध, हमेशा एक रहेगा सिंध।
1: सिंध असेंबली जे आम इजलास में नवं सूबन इंतज़ाम यूनिट बाबत रिथ ते बहस, वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त अंग्रेज़ बि सिंध जो विरांगो न करे सघिया, वॾनि वॾनि तो माण्हुनि उहो चयो आहे नवनि सूबनि जो बहस छॾे छॾियो, पर सभिनी जो मुंहुं बंदि कराइण जो वाइद हल असेंबली में बहस कराइण आहे। सिंध बाबति फ़ैसिलो का अदालत न कंदी, न ई पिंडी में थींदड़ सेमिनारनि या जलसनि जुलूसनि में फ़ैसिलो थींदो, जेसी ताईं असां मां हिकु ॿिए पी ए ज़िंदा आहे सिंध जो विरांगो न थींदो, सिंध हिकु आहे हिकु रहंदी, कंहिंजी ख़्वाहिश या तकरीरुनि सां सिंध जो विरांगो न थींदो। सिंध असेंबली जे इजलास में उहो फ़ैसिलो थींदो त सिंध जो विरांगो कॾहिं बि न थींदो, वॼायो ताड़ियूं ई सिंध हमेशह रहंदी।

0: कोई सामने हो या पर्दे के पीछे हो, ये 50 सालों से खेल रहे हैं पाकिस्तान की धरती के साथ कि बलूचिस्तान के हालात को देख रहे हो कि कहां पहुंच गई। क्या तुम फिर चाहते हो कि सिंध भी इस हालात में आ जाए? और तोड़ोगे? कितना तोड़ोगे? क्या तोड़ के करोगे? क्या मिलेगा? कि है तो सिंध एक है, नहीं तो कुछ नहीं।
1: कि तुम अपने अकीदों के नेजे हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते? तुम्हारे वजूद है, हम ये कैसे मान सकते हैं, कैसे तस्लीम कर सकते हैं कि हमारा बाजू अलग हो जाए, टांग अलग हो जाए, सिर अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए? ऐसा कतन नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि सिंध की तकसीम की बात हो।
2: सिंध असेंबली में रिथ पेश करण जो मकसद सिंध के अवाम के सूरत हाल का आगाह करण है। सिंध की अवाम पांजो रद्द अमल ॾेई छॾियो आहे। सोशल मीडिया उन जो गवाह है जिन खे हिन धरती पनाह ॾिनी हुई। मादरे वतन ऐं माउ जा टुकड़ा करण जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि। सिंध जे मुस्तक़बिल जो फ़ैसिलो सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा कंदा। पीपुल्स पार्टी एम पी निसार खोड़ो जो सिंध असेंबली में ख़िताब। पी पी मेंबर राजा रज़ाक बलोच चयो त सिंध असांजो वजूद आहे, पंहिंजे वजूद जी विरासत कीअं था करे सघूं। सिंध हिकु तारीख़ तहज़ीब सुञाणप आहे। सिंध जी विरासत जो शोशो छॾींदड़नि खे यादि रखणु घुरिजे। जेसीं ताईं हिकु बि हिलाली पुटु मौजूदु आहे त सिंध विराइजी न सघंदी। डॉक्टर सिकंदर शोरो चयो त पंहिंजनि अकाउंट खे जो ख़ुश करण लाइ सिंध जे विरांगी जूं ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि। फार्म 47 ते अचण वारनि खे इख़लाक़ी तौर अहिड़ी ॻाल्हि करण बि न घुरिजे। खुरम किरियो चयो सुमरो चयो त ख़बर पइजी वेंदी त सिंध जो हिलाली पुटु केरु आहे। असां गोलियूं खाइण लाइ तयारु आहियूं पर पंहिंजी माउ सिंध खे विराइण न ॾींदासीं। नजम आलम चयो त मोहसिन नकवी केरु थींदो आहे? सिंध जे विर्छ कराइण वारो इस्लामाबाद खे पैगाम ॾियणो आहे त सिंध हिकु आहे। हिकु रहंदे दुनिया जी का बि ताक़त हुन खे विराए न थी सघे।
3: आज कहीं से कोई भी आवाज अगर सूबों की उठ रही है या इंतजामी यूनिट के हवाले से उठ रही है, एन आईन के मुताबिक कराची एक डिस्ट्रिक्ट था। निसार बोरो साहब ने भी बताया, सर मुशर्रफ साहब ने उसको 5 डिस्ट्रिक्ट में 2000 में तब्दील किया। सर सिंध एक है, एक रहेगा। मैं मुराद अली शाह साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। सिंध को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन इंतजामी यूनिट बनाने से सिंध मजबूत होगा।
0: मुझे सिर्फ इतना बताएं, जब इस सिंध में शहर हो सकते, डिस्ट्रिक्ट हो सकते, डिवीजन हो सकते, तो इस सिंध में इंतजामी यूनिट क्यों नहीं हो सकते? इतनी फिक्र है सिंध की, इतनी फिक्र है। 22,000 अरब रुपए 18 साल में खा गए।
2: सिंध असेंबली में नवन सूबनि बाबति मामूली रिथ पेश करण ते एम क्यू एम मेंबर निसार खोड़ो जा थोरा मञिया। शारिक जमाल चयो त असीं सिंध ख़िलाफ़ न आहियूं, सिंध जो हिकु इंच बि हेॾां होॾां न थींदो, पर हे कहिड़ो दलील आहे त इंसामी साइणी न ॾींदासीं? असांजी धरती माउ पाकिस्तान आहे। सिंध जे माण्हुनि खे सुठी हुकुमानी घुर्जे थी त असांजो साथ ॾियनि। रेहान अक्रम चयो त नवन सूबनि बाबति मामूली रिथ अचण सां असांखे पंहिंजो मौक़ो पेश करण जो मौको मिलियो आहे। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुटो 1973 में में नवन सूबनि जे क़याम जो तरीक़ेकार वाज़े कयो। भुटो खे ख़बर हुई त मुस्तक़बिल में नवन सूबनि जी ज़रूरत पहुची सघे थी। आदिल अस्करी चयो त सिंध जे विरांगे बाबति क़रारदाद आणण बदिरां पंहिंजे गवर्नर्स ठीकु कयो। सिंध साउथ ऐं सिंध वेस्ट जहिड़ा सूबा ठही सघनि था। हिकु वज़ीर तालीम निज़ाम न हलाए सघे त पोइ 5 वज़ीर हुजणु घुर्जनि। आमिर सिद्दीकी चयो त को बि नथो चाहे त सिंध विराइजे, पर अवाम जा मसला हल न आहिनि कया। आम सिंधी माण्हू हालति कड़ी आहे, पंहिंजा अमल ठाहे छॾिया अथऊं।

वफ़ाक़ी हुकूमत पेट्रोल महांगो ऐं डीज़ल सस्तो करे छॾियो। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल 77 पैसा फ़ी लीटर महांगो, डीज़ल 1 रुपयो 3 पैसा फ़ी लीटर सस्तो कयो वियो। पेट्रोल जी नई क़ीमत 342 रुपया 79 पैसा ऐं डीज़ल 370 रुपया 41 फ़ी लीटर थी वियो। पेट्रोलियम शयुनि जा नवां अघु 1 सेप्टेम्बर लाइ हूंदा।

જી નહીં કિંમત મુકરર કરે છે. જારી કરેલ નોટિફિકેશન મુજબ ફી કિલો ઓઇલ પીજીજી નહીં કિંમત 258.65 રૂપિયા મુકરર કઈ વઈ આ 11.8 કિલોગ્રામ વારે ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડર જી કિંમત મેં 51.17 રૂપિયા વાદ ઘરેલુ સિલિન્ડર જી નહીં કિંમત 3052 રૂપિયા થઈ વઈ. जैकम्बाबाद में घर में 1.40 करोड़ रुपये जो दाड़ो एयरपोर्ट थाने जी हद दरगाह पीर बुखारी भरसा हथियार बंधन डॉक्टर तुफेल शाह के घर में गिड़ी भातियों के यरगमार बनाए अलमारी में रखल 1.40 करोड़ रुपया खड़ी फरार ब शकी गिरफ्तार पुलिस चवण आए तो वारदात की जांच कर रहा हूं. दादू वेझो चांडिया बिरादरी के बिन धुरियन में खूनी तकरार बाद पुलिस जो कच्चे में ऑपरेशन ट्री का शकी गिरफ्तार आचर ढी गोट शेख गुलाब दानो चांडियो में चांडिया बिरादरी के बिन धुरियन के जड़े में 8 जणा मारजी वया हुआ. 10 थाणन के पुलिस सर्च ऑपरेशन कर जवाबदार जा घर डराए पट कर छ्या. मीरापुर में नीगर जो घर अंदर पंखे में लटकियल लाश 15 वीरन के नीगर में सुम सतो जो लाश मिलो. नीगर के मौत जो कारण मालूम न थी सको. कराची के इलाके औरंगी टाउन में जाती जेड़े में नौजवान छुरियन जा वार करे कतुल. पुलिस चवण आए तो मोमिनाबाद मलक चौक वेझो बिन धुरियन में जेड़े दौरान जवाबदार छुरियन जा वार करे 3 वरन के अदनान के कतुल कयो आए वधिक जांच करे रहा हूं. इंग्लैंड हथा बिन टेस्ट मैचेस में 72 शिकस्त बाद पीसीबी जो एक्शन कौमी टीम के हेड कोच ए बॉलिंग कोच समेत 7 रांदीगर के रिलीज कयो वयो. मोहम्मद रिजवान इमाम उलक सलमान अली आगा अली उस्मान आमिर जमाल मोहम्मद अवेज जफर ए खुरम शहजाद दे वरंदा. 3 टेस्ट मैच लाए साइम अयूब अब्दुल्ला फजल मोहम्मद इमरान जूनियर रजाउला इरफात मनास मोहम्मद इमरान स्काउट में शामिल. टीम के हेड कोच सरफराज अहमद बॉलिंग कोच उमर गुल के रिलीज करे वापस दे घुराया वो.

0: अगर हिम्मत है तो इस असेंबली में रेजोल्यूशन लाओ, नहीं है हिम्मत किसी में, इंशाल्लाह ताला हम सिंध के इलेक्टेड लोग, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स, जब तक एक भी जिंदा है ना, ये सिंध सूबा जो सदियों से है, जिसको अंग्रेजों ने कोशिश की तोड़ने की, वापस सिंध के लोग इस सूबे को इकट्ठे किया और सिंध के लोगों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसी हाउस ने पास की। तो मेहरबानी करके किसी के अगर खाम ख्याल में कुछ है तो वो निकाले, कोई कोर्ट के फैसला नहीं कर सकती, कोई जलसे में बैठ के तकरीर करके ये फैसला नहीं कर सकता, कोई टीवी में बैठ के सेमिनार करा के ये फैसला नहीं कर सकता, फैसला इस हाउस में होगा, डिबेट इस हाउस में होगी, फैसला ये हाउस करेगा और इंशाल्लाह ताला ऐसा फैसला करेगा कि जो बाकी आवाजें चल रही है ना उनके सब मुंह बंद करेंगे हम इंशाल्लाह। क्या तालियां है कि ये सूबा हमेशा एक रहेगा सिंध, हमेशा एक रहेगा सिंध।
1: सिंध असेंबली जे आम इजलास में नवं सूबनि इल्ज़ाम यूनस बाबति रिथ ते बहस। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त अंग्रेज़ बि सिंध जो विरहाङो न करे सघिया। वॾनि वॾनि तो माण्हू हो चयो नवनि सूबनि जो बहस छॾे छॾियो, पर सभिनी जो मुंहुं बंदि कराइण जो वाइद हल असेंबली में बहस कराइण आहे। सिंध बाबति फ़ैसिलो का अदालत न कंदी, न ई पिंडी में थींदड़ सेमिनारनि या जलसनि जुलूसनि में फ़ैसिलो थींदो। जेसी ताईं असां मां हिकु ॿिए पीए ज़िंदा आहे, सिंध जो विरहाङो न थींदो। सिंध हिकु आहे, हिकु रहंदी। तव्हांजी ख़्वाहिश या तकरीरुनि सां सिंध जो विरहाङो न थींदो। सिंध असेंबली जे इजलास में उहो फ़ैसिलो थींदो त सिंध जो विरहाङो कॾहिं बि न थींदो। वॼायो ताड़ियूं, ही सिंध हमेशह रहंदी।
0: कोई सामने हो या पर्दे के पीछे हो, ये 50 सालों से खेल रहे हैं पाकिस्तान की धरती के साथ कि बलूचिस्तान के हालात को देख रहे हो कि कहां पहुंच गई। क्या तुम फिर चाहते हो कि सिंध भी इस हालात में आ जाए? और तोड़ोगे? कितना तोड़ोगे? क्या तोड़ के करोगे? क्या मिलेगा? कि है तो सिंध एक है, नहीं तो कुछ नहीं। कि तुम अपने अकीदों के नेजे हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते? तुम्हारे वजूद है, हम ये कैसे मान सकते हैं, कैसे तस्लीम कर सकते हैं कि हमारा बाजू अलग हो जाए, टांग अलग हो जाए, सिर अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए? ऐसा कतन नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि सिंध की तकसीम की बात हो।
1: सिंध असेंबली में रिथ पेश करण जो मकसद सिंध जे अवाम खे सूरत हाल खां आगाह करणु आहे। सिंध जी अवाम पंहिंजो रद अमल ॾेई छॾियो आहे। सोशल मीडिया उन जो गवाह आहे जिन खे हिन धरती पनाह ॾिनी हुई, मादरे वतन ऐं माउ जा टुकड़ा करण जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि। सिंध जे मुस्तक़बिल जो फ़ैसिलो सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा कंदा। पीपल्स पार्टी एम पी ए निसार खोड़ो जो सिंध असेंबली में ख़िताब। पी पी मेंबर राजा रज़ाक बलो चयो त सिंध असांजो वजूद आहे, पंहिंजे वजूद जी विरासत कीअं था करे सघूं। सिंध हिकु तारीख़ तहज़ीब सुञाणप आहे, सिंध जी विरासत जो शोशो छॾींदड़नि खे यादि रखणु घुरिजे। जेसीं ताईं हिकु बि हिलाली पुटु मौजूदु आहे त सिंध विराइजी न

0: सकंदी। डॉक्टर सिकंदर शोरो चयो त पंहिंजे नाकान खे जो खोश करण लाइ सिंध विरहांगी जूं ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि। फार्म 47 ते अचण वारनि खे इख़लाक़ी तौर अहिड़ी ॻाल्हि करण बि न घुर्जे। फ्रम क्विक किरियो चयो, सुमरो चयो त ख़बर पइजी वेंदी त सिंध जो हिलाली पुटु केरु आहे। असां गोलियूं खाइण लाइ तयारु आहियूं पर पंहिंजी माउ सिंध खे विरहाइण न ॾींदासीं। नजमी आलम चयो त मोहसन नकवी केरु थींदो आहे, सिंध जे विर्छ कराइण वारो। इस्लामाबाद खे पैगाम ॾियणो आहे त सिंध हिकु आहे, हिकु रहंदे दुनिया जी का बि ताक़त हुन खे विराए न थी सघे।
1: आज कहीं से कोई भी आवाज अगर सुबह की उठ रही है या इंतजामी यूनिट के हवाले से उठ रही है, एन आईन के मुताबिक कराची एक डिस्ट्रिक्ट था। निसार बोरो साहब ने भी बताया, सर मुशर्रफ साहब ने उसको 5 डिस्ट्रिक्ट में 2000 में तब्दील किया। सर सिंध एक है, एक रहेगा। मैं मुराद अली शाह साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, सिंध को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन इंतजामी यूनिट बनाने से सिंध मजबूत होगा।
2: मुझे सिर्फ इतना बताएं, जब इस सिंध में शहर हो सकते, डिस्ट्रिक्ट हो सकते, डिवीजन हो सकते, तो इस सिंध में इंतजामी यूनिट क्यों नहीं हो सकते? इतनी फिक्र है सिंध की, इतनी फिक्र है। 22,000 अरब रुपए 18 साल में खा गए।
0: सिंध असेंबली में नव सूबनि बाबति मामूली रिथ पेश करण ते MQM मेंबर निसार खोड़ो जा थोरा मञिया। शारिक जमाल चयो त असीं सिंध जे ख़िलाफ़ न आहियूं, सिंध जो हिकु इंच बि हेॾां होॾां न थींदो, पर हिकिड़ो दलील आहे त इंसामी यूनिट साइणी न ॾींदासीं। असांजी धरती माउ पाकिस्तान आहे, सिंध जे माण्हुनि खे सुठी हुकुमानी घुर्जे थी त असांजो साथ ॾियनि। रेहान अकरम चयो त नव सूबनि बाबति मामूली रिथ अचण सां असांखे पंहिंजो मौक़ो पेश करण जो मौक़ो मिलियो आहे। शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 में में नव सूबनि जे क़याम जो तरीक़ेकार वाज़े कयो। भुट्टो खे ख़बर हुई त मुस्तक़बिल में नव सूबनि जी ज़रूरत पहुची सघे थी। आदिल अस्करी चयो त सिंध जे विरहाङे बाबति क़रारदाद आणण बदिरां पंहिंजे गवर्नर्स ठीकु कयो, सिंध साउथ ऐं सिंध वेस्ट जहिड़ा सूबा ठही सघनि था। हिकु वज़ीर तालीम निज़ाम न हलाए सघे त पोइ 5 वज़ीर हुजणु घुर्जनि। आमिर सिद्दीकी चयो त को बि नथो चाहे त सिंध विरहाइजे, पर आवाम जा मसला हल न आहिनि कया। आम सिंधी माण्हू हालति कड़ी आहे, पंहिंजा अमल ठाहे छॾिया अथऊं।

0: नए मुस्तकिल सेक्रेटरीट कायम करण ते इतफाक सरबराह पाकिस्तान हवाले सेक्रेटरीट जो पहिरियों सरबराह टिनि सालनि लाइ पाकिस्तान मां मुक़ररु कयो वेंदो इस्तांबुल में मुआहिदे तहत क़ाइम स्ट्रेटजिक सियासी ऐं दिफ़ाई कमेटी जो पहिरियों इजलास टिनि मुल्कनि विच में सियासी दिफ़ाई स्ट्रेटजिक सहकार खे वधीक मंज़ूम बणाइण कयल राब्तनि खे मज़बूत करण इलाइक़े सलामती बाबति मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई दहशतगर्दी ख़िलाफ़ कयल कोशिशुनि खे वधीक असराइतो बणाइण बि एजेंडा में शामिल इजलास खे पोइ मीडिया खे ब्रीफिंग ॾींदे तुर्किया जे परॾेही वज़ीर हाकान फिदान चयो त इजलास जो मक़सदु इलाइक़े अमून इस्तेहकाम खे हथी ॾियणु आहे इजलास में कयल फ़ैसिला नतीजा ॾींदड़ साबित थींदा खिते में अमून क़ाइम करण लाइ समूरनि इलाइक़ाई मुल्कनि खे गॾिजी क़दम खणण जी ज़रूरत आहे मुआहिदे खे बाज़ाबता तौर मक़ाम मुआहिदे जो नालो ॾियण ते इतफ़ाक़ मुआहिदो नेटो जे पौराव करे थो ॿियनि मुल्कनि लाइ बि मुक़ररु शर्तुनि तहत मुआहिदे में शामिलु थियण जा दरवाज़ा खुलियल आहिनि तुर्किया में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जूं आम मुलाकातूं पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया विच में दिफ़ाई सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ सऊदी अरब जे बचाव वारे वज़ीर शहज़ादे खान
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: हर चप्पा हर गोशा
4: जीए एफएम 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: तो पुराने दौर में बेड़ा हलंदा हुआ ऐं सफ़र हूंदो दरियाई, त हू सफ़र करे हलिया वेंदा हुआ ऐं हुननि जो वञूं हुननि जो भेनरूं इंतज़ार कंदियूं हुयूं। कॾहिं असांजा
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: मका दिफाई मुआदे के इदारती शक्ल दियण ऐं मुस्तक़िल सेक्रेटरीट क़ाइम करण ते इतफ़ाक़ तंज़ीम जे सरबराही पाकिस्तान हवाले इस्तांबुल में इजलास जो ऐलान जारी कयल पधराईअ में ॼाणायो वियो आहे त तंज़ीम जो सेक्रेटरीट सऊदी अरब में क़ाइम कयो वेंदो। शुरूआती तौर सेक्रेटरीट जी सरबराही पाकिस्तान सां तालुक़ु रखंदड़ सेक्रेटरी जनरल जो उहिदो 3 सालनि लाइ हूंदो। पधराईअ में ॼाणायो वियो आहे त मका दिफ़ाई मुआदे में शामिल टई मुल्क पंहिंजनि गॾियल सरगर्मियुनि ज़रिए दिफ़ाई सलाहियतुनि ऐं हथियारबंद फ़ौज जे गॾियल तावन खे मज़बूत बणाईंदा। दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ गॾियल कोशिशुनि खे वधीक असराइतो बणाइण ते बि इतफ़ाक़ इजलास खां पोइ मीडिया खे ब्रीफिंग ॾींदे तुर्क जे परॾेही वज़ीर हाकान फिदान चयो आहे त इजलास जो मक़सदु इलाइक़ाई अमुन ऐं इस्तहकाम खे हथी ॾियणु आहे। इजलास में कयल फ़ैसिला नतीजे ॾींदड़ साबित थींदा। खिते में अमुन क़ाइमु करण लाइ समूरनि इलाक़ाई मुल्कनि खे गॾिजी क़दम खणण जी ज़रूरत आहे। ॿियनि मुल्कनि लाइ बि मुक़ररु शर्तनि तहत मुआदे में शामिलु थियण जा दरवाज़ा खुलियल आहिनि।
1: तुर्किया में फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर जूं मुलाकातूं। पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया विच में दिफ़ाई सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सऊदी अरब जे बचाउ वारे वज़ीर शहज़ादे ख़ालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद, तुर्किया जे परॾेही वज़ीर हाकान सां मुलाक़ात। तुर्किया जे क़ौमी दिफ़ा वारे वज़ीर ऐं तुर्क जनरल स्टाफ जे सरबराह जनरल सां बि फील्ड मार्शल जूं मुलाक़ातूं। मुलाक़ातनि दौरान गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि ते बेतरफ़ी दिफ़ाई सहकार ऐं इलाक़ाई सलामती जी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾेवट कई वई। ISPR मूजिबि आर्मी चीफ जूं मुलाक़ातूं टिन्ही मुल्कनि विच में भाईचारे जे मज़बूत लाॻापन ऐं वधंदड़ दिफ़ाई सहकार जी अकासी कनि थियूं।
0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं ईरानी सदर मसूद पज़ेशान में मुलाक़ात। बिश्केक में शंघाई तावन तंज़ीम जी सरबराही इजलास ऐं मौक़े ते थियल मुलाक़ात दौरान पाक ईरान ॿितरफ़न लाॻापन ऐं मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार समेत ताज़ी सूरताल ते ॻाल्हियूं। ॿितरफ़न लाॻापन खे वधीक हथी ॾियण ऐं मज़बूत बणाइण जो बि अज़म। इजलास में ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराची ऐं चीनी परॾेही वज़ीर बि विच में मुलाक़ात थी।
1: मुल्क जे राजधानी इस्लामाबाद ऐं रावलपिंडी में तेज़ बरसाति रोड रस्ता तलाउ जो देख ॾियण लॻा। E11 नालो भरिजण सबब पाणी आबादी में दाख़िल। ली नाले में बि ख़तरनाक हद ताईं वाध। स्कूलनि में मोकल जो ऐलान। ज़िले इंतिज़ामिया जो चवणु आहे त रावलपिंडी में मजमूई तौर 190 मिलीमीटर बरसाति रिकॉर्ड कई वई। नालाली में कटियारिया वटि पाणी जी सतह 29 फुटनि खां वधी वई। ग्वालामुंडी पुल ते पाणीअ जी सतह 24 फुटनि ताईं पहुची वई।

तो पुराने दौर में बेड़ा हलंदा हुआ ऐं सफ़र हूंदो दरियाई त हू सफ़र करे हलिया वेंदा ऐं हुननि जो वञूं हुननि जो भेनरूं इंतज़ारु कंदियूं हुयूं कॾहिं असांजा सांगेड़ा साथीड़ा वरी वतन ते वरंदा त उस्ताद बुखारी जो शहर मूंखे यादि अची वियो आहे निशानियाली थिया में तेकूं उहे न विञावी ख़ैर नाल वेंदा पई वल ख़ैर नाल आवी लड़िया लाड़ वेंदे विसारी न काछा पोवे शल न ते ते कंहिं पराई दा पाछा उथे खोड़ खोटिया हौसनी मता पेच पावी खैर नाल वेंदा पई वल खैर नाल आवी।

0: या के खास मौके की तैयारी हर लम्हे पेंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्च क्रीम हेयर कलर सा पेंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग नओ अंदाज ऐ नई ताजगी अडी पेंजे वेजे स्टोर ता आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐ पेंजे खूबसूरती के दियो नओ रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरत
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यहां वहां जी एफ

आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. You are joining into G Radio FM 88 or Sathi Saath. Pyara sa chehra, meethi si awaaz, masoom sa dil, sweet si hansi, perfect personality, khush mizaj, andaaz. Mujhe kehte hain RJ Rukhsar, Sindh ki awaaz. ऐसे ही आप आई हूँ सुखी जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है जो ये आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 पीएम आपको मेरा साथ रहता है और खूबसूरती बड़ा खूबसूरत से साझो कि आज भी जारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक तो प्रोग्राम में अगर हम वक्त की बात करते हैं तो 11:23 पाकिस्तान का मियारी वक्त है तमाम लोगों की गलियों में बज रहा है इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं चाहे बस में है ट्रक में है रिक्शा में है कार में है बाइक में है जिस पर जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हाउ सेफ सेफ जर्नी बट लेट द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली खुदा खैरियत मौजूद है।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जो शहर जो घर सकरण आए सकरण जो आवाज
2: GFM 90.8।

0: Okay, you welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपका मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का। और आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 03000113488 के ऊपर। नेक्स्ट कॉलर, हेलो हेलो हेलो, ओ कॉल ड्रॉप होगी। 03000113488 के ऊपर एक और कॉलर, हेलो। वालेकुम अस्सलाम, रशीद अहमद कैसे, ठीक ठाक फ्रॉम भावल नगर
1: जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह को सलामत रखे।
0: थैंक यू।
1: इतने ज्यादा रश में, इतने ज्यादा कॉलर, इतने ज्यादा लोग आपको प्रोग्राम सुनने वाले, कॉल करने वाले, और आप आवाज की पहचान और फिर मेरे शहर का नाम लेना, यानी मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक एजाज है।
0: अच्छा चले ठीक
1: है, सबूत है ये।
0: थैंक यू सो मच रशीद अहमद को ये अच्छा सा गाना।
1: कभी तो तुमको याद आएंगे वो बहारें वो समां, झुके झुके बादलों नीचे मिले थे हम तुम जहां। ये इखलाक अहमद की आवाज में,
0: किसकी आवाज में?
1: इखलाक अहमद की आवाज में,
0: अहमद रुश्दी की आवाज में नहीं,
1: मेरे ख्याल में शायद इखलाक अहमद, देख ले चेक कर ले।
0: नहीं, असल में ये अहमद रुश्दी का सॉन्ग है।
1: अच्छा अच्छा ठीक है
0: ठीक है, और कुछ कहेंगे
1: जी? तो ये माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई फराज भी आप पर सुन रहे हैं, जवान भाई है अजीदुल्ला, और ये अपना ताहिर लुंड और उनके वालिद साहब भी सुन रहे हैं आपको।
0: ओके, सबको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में।
1: जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सबको सलाम कहूंगा, और आपके लिए खूबसूरत दुआ के अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
0: थैंक यू सो मच जी। और ये रहा गाना।

0: मुल्क की राजधानी इस्लामाबाद ऐं रावलपिंडीअ में बरसाति तबाही मचाए छॾी। रोड रस्ता तलाउ जो ॾेख ॾियण लॻा। गाॾी मुकमल तौर ते ॿुॾी वियूं। E11 नालो भरिजण सबबि पाणी आबादीअ में दाख़िल। नाला लाइ पाणी में बि पाणी जी सतह में ख़तरनाक हद ताईं वाध। ग्वाल मंडी ऐं कटरान में बि पाणी बुलंद तरीन सतह ते पहुतल।
1: सिंध काबीना ई ए आफ़िस ऐं ई काबीना खे इदारे जी शकल ॾियण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। ए गाॾियुनि जे रजिस्ट्रेशन फीस बि 1,000 रुपया मुक़रर। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सरत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। सैद मुराद अली शाह चयो आहे त ई आफ़िस वारे निज़ाम खे शुरूआती तौर 10 खातनि ते लागू कयो वेंदो।
0: तुर्किया इसराइली वज़ीर आज़म खे दुनिया लाइ ख़तरो करार ॾेई छॾियो। तुर्किया जे परॾेही वज़ीर हाकान फिदान चयो आहे त गज़ा में नसल कशी करण बाद इसराइली वज़ीर आज़म इंसानियत जो दुश्मन बणिजी चुको आहे। आलमी बिरादरी नेतन्याहू जूं पॉलिसियूं रोकण लाइ हंगामी बुनियादनि ते क़दम खणे।
1: मेहर भरिसां चाणे बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में पुराणे तकरार सां झेड़ो। नौजवान क़तल, 3 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ हासिल खो सूबे चाणे बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ पुराणे तकरार सां झेड़ो थियो। फायरिंग में 35 वरनि जो सजाद वालिद बख्शल चांडियो क़तल। ॿिए दुर्जा इम्तियाज़ चांडियो, वाहिद बख्श चांडियो ऐं ग़ुलाम मुस्तफ़ा चांडियो लठियूं लॻण सबबि सख़्त ज़ख़्मी।
0: लाल जे ॻोठ हाजी जान मोहम्मद हिंगोरो में उस्तादनि जे खोट ख़िलाफ़ ॻोठाणनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त 150 शागिर्दनि लाइ सिर्फ़ हिकु उस्तादु आहे। उस्तादनि जी खोट सबबि शागिर्दनि जी तालीम मुतासिर थी रही आहे। उस्ताद मुक़ररु करे परेशानी ख़तमु कई वञे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर पहर जिंदगी की लहर। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स जो कि मुझे रिसीव हो चुके हैं जी, और कमेंट्स हमें कर दिए हैं नजीर खोसो ने बहुत सारे, और लिखते हैं कि दुनिया में कोई काम ना अच्छा है और ना बुरा है, बल्कि इंसान की नीयत अच्छी होती है या बुरी होती है। बंदा अगर बद हो जाए तो काम बद हो जाते हैं, और बंदा अगर नेक हो तो वही काम नेक बन जाते हैं। वाओ, रास आ गया नंगे पैर फिर दिल नुजोग रास आ गया। नजीर खोसो, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा 3000111348 के ऊपर आप लोगों की कॉल्स लेंगे हम, और साथ में हम गाना चेंज करेंगे, और मेरे ख्याल से हम गाना प्ले करेंगे, मैशअप सॉन्ग प्ले करते हैं जी, मैशअप सॉन्ग सुनते हैं, एंड मैशअप सॉन्ग के साथ ही हम आगे चलते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: दास्तानी।
1: अगर जी नेक्स्ट कॉलर लेने जा रहे हैं। हेलो हेलो। ओके जी हेलो, आवाज नहीं आ रही है, हमें चेक करेंगे कि क्यों नहीं आ रही है। हेलो वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: ये मैं अली रजा।
1: अली रजा कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: सखर से।
1: सखर से बात कर रहे हैं, ओके। पहली दफा कॉल की है?
2: जी जी।
1: अच्छा मुझे बताएं, टंग ट्विस्टर सुनाएं, बोलेंगे? हेलो नहीं सुना
2: जी,
1: टंग ट्विस्टर सुनाएं, बोलेंगे? ओके, मुझे आपकी आवाज कुछ समझ नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन आ रहा है और भाई है भी कंफ्यूज बात करने में। हेलो नेक्स्ट कॉलर। हेलो वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, किधर से आ रही हो?
3: इधर से।
1: इधर से आ रही हो, इधर से आने में देर लग गई?
3: बिल्कुल देर लगी
1: है ना, तो टंग ट्विस्टर सुना है, बोलोगी?
3: अच्छा टंग ट्विस्टर ये टूटी चूस का तोता, तोती की चूस टूटी।
1: यस ऐसे ही है,
3: टूटी चूस का तोता, तोती की चूस टूटी, टूटी चूस का तोता, तोती की चूस टूटी, टूटी चूस का तोता, तोती की चूस टूटी, टूटी चूस का तोता, तोती की चूस टूटी, टूटी चूस का तोता, तोती की चूस टूटी।
1: आगे स्टॉप। वाओ, मतलब क्या जा रही हो चोंच के साथ। अच्छा कुछ और कहना है सरदर्द? थैंक यू सो मच। और ये सरदर्द वो वाहिद बनती है जो रोज विनर बनने के लिए कॉल कर लेती है, बिचारी। 03000113488।
4: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लवायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा, तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार, उत्तरी और पैदाओं में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा, तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले।
6: अच्छन वारन खां परेशान।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा, तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा, तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले।
7: आप सुन रहे हैं,
8: आप सुन रहे हैं
7: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की।

لاسٹ ان لکی کالر

0: Hello? Hello?
1: Hello.
0: Walaikum salam. Okay, you call drop away 03000 11 34 88. Call try. Hello?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से?
1: से बात कर रहा हूँ, लड़का से। अरे हम इंशाल्लाह भी जाएंगे शादी हाल में।
0: अच्छा,

0: Ja, und dann lieber mal Songs davon erwähnen.
1: बोरो सिटी से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारी सिस्टर, वेलकम सिस्टर, आपके प्रोग्राम का हम इंतजार करते हैं और कहते हैं कि जी आपका

0: प्रोग्राम की क्या बात है। संदीप कुमार, कृष्ण कुमार और मुमताज मलाई का गाना सुनना चाहते हैं जी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ फाइनली मेरे जाने का वक्त हो चुका है, तो हम लेंगे आपसे इजाजत। इंशाल्लाह मेरी आपसे अब चिट चैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे। सुनो मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है। और इसी के साथ साथ लास्ट में हम प्ले करेंगे अच्छा सा सॉन्ग,
1: कैसे चलेंगे सिलसिले, तुमसे ही करता शुरू।
0: सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज।

पाणी खिते जी लाइफ लाइन आहे। पाणीअ खे हथियार तौरु इस्तेमाल करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। आलमी मुआहिदनि ते रूह मूजिबि अमल थियणु घुरिजे। मका दिफ़ाई मुआहिदो बि कंहिंजे ख़िलाफ़ु न आहे। इस्लामाबाद मफ़ामत यादाश ते बि खिते में अमुन जे बहाली लाइ आम आहे। शिंगाई सहकारी कॉन्फ्रेंस जी सरबराही इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त दहशतगर्दी बि खिते खे संगीन ख़तरनि मां हिकु आहे। दहशतगर्दनि खे अफ़गान सरज़मीन इस्तेमालु करण जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। पाकिस्तान इलाइक़े में जटादार अमन जे क़याम लाइ परज़म आहे। ॾखिण एशिया मुकमल अमन खां सवाइ तरक़ी वारो हदफ़ हासिलु नथो करे सघे। पाकिस्तान आलमी कानून मूजिबि तकरारनि जो हलु चाहे थो।

0: ताईं इस्लामाबाद ऐं पिंडी में बरसाति तबाही मचाए छॾी। घरनि जूं छितियूं किरण जे नतीजे में ॿजणा फोत, रोड रस्ता तलाउ जो नेक ॾियण लॻा। गाॾियूं मुकमल तौर ते ॿुॾी वियूं। E11 नालो भरजण सबबि पाणी आबादी में दाख़िल, केतिरा ई घर ॿुॾी विया। नालाली में पाणी जी सतह में ख़तरनाक हद ताईं बाद फोज तलब। कवाल मंडी ऐं कटियारिया में बि सूरतयाल ख़तरनाक बणियल। पिंडी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रोडनि ते गाॾियुनि बदिरां ॿेड़ियूं हलण लॻियूं। बरसाती पाणी सबबि रहवासी घरनि ताईं महदूद थी विया।
1: सिंध काबीना ई आफ़ीस ऐं ई काबीना खे इदारे जी शिकिल ॾियण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। ई गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन फीस बि 1,000 रुपया मुक़ररु। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। सूबे जे कचे वारे ज़मीन जी सर्वे कराए नक्शा ठाहिण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सूबाई मालियाती वार्ड कमीशन जी तयारीअ लाइ अशरफ वास्तीअ खे कंसल्टेंट मुक़ररु करण जो मंज़ूरी ॾिनी वई। PCC यूनिट जो बि नालो तब्दील करे सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लिमिटेड रखियो वियो। पास्को खां 2,23,000 मेट्रिक टन कण ख़रीद करण जी मंज़ूरी ते 3,00,000।
0: वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जूं बक्शिश में चीन समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे परॾेही वज़ीरनि सां मुलाक़ातूं। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं। इसहाक़ डार चीन, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान ऐं परॾेही वज़ीरनि सां मुलाक़ात कई। परॾेही आफ़ीस मौजूदु मुलाक़ातनि दौरान ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं।
1: मेयर भरिसां चांडिया बिरादरीअ जे ॿिनि धुरियुनि में पुराणे तकरार तां जहिड़ो नौजवान क़तल, 3 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ हासिल खोसो में चांडिया बिरादरीअ जे ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ पुराणे तकरार तां जहिड़ो थी पियो। फायरिंग जे नतीजे में 35 वरनि जो सजाद वलद बख़्शल चांडियो क़तल थी पियो। ॿिए धुर जा इम्तियाज़ चांडियो, वाहिद बख़्श ऐं गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो लठियूं लॻण सबबि सख़्तु ज़ख़्मी थी पिया।

0: दादू में अवामी फोरम जो ज़रिए पानी के कोर्ट खिलाफ धरणो हारे नाबादगार शहरन शाहजहान पार्क का प्रेस क्लब तक रैली कड़ी धरणो हो। अगवान दरियाहान में पानी की सूरत हाल बेहतर होजन बावजूद शाखन में पानी की खोट है, फसल सुकी रहा है, आबादगार परेशान है, पानी फराम किया वे।
1: उडेरो लाल वेझो स्कूल में उस्ताद सहूलतुन की खोट खिलाफ गोठाणन शागिर्द एहतजाज। गोठ हाजी जान मोहम्मद हिंगोर के स्कूल में सहूलतुन की खोट खिलाफ गोठाणन शागिर्द एहतजाजी मुजाहिरो कयो। निंदो वेझो भी उस्ताद के बदली खिलाफ गोठ सिद्दीक खास किले जो प्राइमरी स्कूल बंद थी वो गोठाणन शागिर्द उस्ताद के बदली खिलाफ एहतजाज कयो। गोठाणन जो चवण है तो गोठ के स्कूल में मुकर्रर उस्ताद बदली थियण बाद में स्कूल 6 महीनों का बंद है, जो नोटिस वी उस्ताद मुकर्रर किया वे।
0: मोरे में उस्ताद के घर से हमले ए फायरिंग खिलाफ सियासी समाजी धुरन जो एहतजाज। सिंध कॉलोनी में उस्ताद पीरल सियाल के घर से हमले खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरो किया वो। मुजाहिरन जो चवण है तो पुलिस एहलकार घर से फायरिंग कर नौजवान अली रजा सियाल के जख्मी किया है, नोटिस वी इंसाफ फराम किया वे।
1: जोई ए नवाब शाह में आबगाह जहा वाक़ा नौजवान ए पेशमाम जिंदगी जो अंत आंदो। जोई के गोठ बचल खान रिंद में नौजवान अदनान रिंद पान मथा पिस्टल जो फायर किया। वारसन जो चवण है तो नौजवान घरू मसलन ता कावड़ जी घर के कमरे अंदर पान मथा पिस्टल जो फायर किया। नवाब शाह में मस्जिद के मौलवी घर अंदर फाव खाई आबगाह किया। बंगवार कॉलोनी की मस्जिद के पेशमाम 61 वर की अयाज चिना जिंदगी जो अंत आंदो। घर घर अंदर फाव खाईदड़ मौलवी के आबगाह जो कारण मालूम न थी सको।
0: घोड़ावारी लगवी गो गाड़ी के टक्कर बाद सुजुकी सिम नाले में कल ही केतरा ही मुसाफिर जख्मी। हादसे के नतीजे में औरतन ए बारन समेत केतरा ही मानू जख्मी थे। मुसाफिरन जो वीगो गाड़ी के ड्राइवर खिलाफ एहतजाज केस दाखिल करे केस गिरफ्तार करण जो मुतालबो कयो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਕ ਸੜਸਾਂ।

जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती, आपके सिद्रा के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे। और जी आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या तरीके कार होने वाले वो जरा आपको बताएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है सबसे पहले जो है ना वो बता देते हैं। तो आज के प्रोग्राम में टॉपिक की अगर बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सारे लोग मुझे बताइए। हाँ जी, सारे लोग ही बताएंगे, जाहिर सी बात है, सारे लोग बताइए कि वो। हाँ जी, आज भी एक पहेली है, मैं सोच रही थी कि वैसे तो आप लोगों से पहेलियां मैं कम ही पूछती हूँ, तो आजकल आप लोगों से कुछ मैं पहेलियां जो है ना वो पूछ लेती हूँ। तो आज की जो पहेली होने वाली है वो कुछ इस तरह से होगी कि आपने मुझे बताना है कि आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है। बिल्कुल जी, आज की पहेली है जो कि आपने बताना है इसका जवाब क्या हो सकता है, आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है। ठीक है, अगर इसका जवाब आप जानते हैं, अगर आप टॉपिक को फॉलो करना चाहते हैं, शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। बिल्कुल जी, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8812। और जनाब अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी ये लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, अगर आप सर्च करते हैं तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। अगर आप रेडियो के जरिए हमारा प्रोग्राम नहीं सुन पाते, यानी कि आप नहीं है उन उन एरिया के अंदर जहां जहां पर रेडियो की आवाज़ आती है, तो कोई मसले की बात नहीं, आप फेसबुक ऑन कीजिए, हमारा पेज खोलिए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिससे आप लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे। तो लाइव के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं तो आप हमारा प्रोग्राम इजीली सुन सकते हैं। अगर शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं तो आप मुझे पैनल पर मैसेज करते हैं, सिंपली ये तरीके कार हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के। और आप जल्दी से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए और मुझे बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और कहां कहां से सुनते जा रहे हैं ये भी बताइए। और टॉपिक को फॉलो करना चाहते हैं तो वो तो भाई जरूर से कीजिएगा। और आज का जो सवाल पूछा गया है वो थोड़ा सा मजेदार है वो ऐसे कि आप मुझे बताएंगे कि आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है, क्या आता है, बताएं तो जरा। वैसे अब आप ये सोचेंगे कि भाई आसमान और जमीन के बीच में दरमियान में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे हमने नोटिस करा है बहुत सारी चीजें, बस क्या क्या चीजें आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, आपने मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है। और जल्दी से मुझे 8812 पर ज्वाइन कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं और कोई अच्छी अच्छी से गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप फरमाइश कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और अगर आप हाँ जी घुड़ने वाले लिसनर्स हैं, यानी कि बहुत से लोग घुड़ने वाले लिसनर्स होते हैं, वो ऐसे क्योंकि वो हमारा प्रोग्राम तो सुन रहे होते हैं लेकिन वो शामली प्रोग्राम नहीं हो पाते हैं, तो जनाब इतनी ज्यादा जो ना वो खामोशियां अच्छी नहीं होती। वैसे भी कहते हैं कभी ना कभी खामोशियों को तोड़ लेना चाहिए, और इसी के साथ आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और इसके अलावा मुझे बताइए, हाँ जी भाईजन आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये जो इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी सवाल थे, तो उनको वेलकम और मोहब्बतों के साथ जनाब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहा जाता है। और साथ यहाँ पर टाइम देखा तो टाइम हो जाता है जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाया जाएगा, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास आएंगे तो जनाब मजीद आप लोगों में से कितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, क्या क्या कह रहे हैं, कौन कौन से गाने सुनेंगे, ये जरा वापस आकर आप लोगों को बताते हैं। आप जरा ज्वाइन करते जाइए और टॉपिक को फॉलो कीजिएगा, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, GFM 88 नेटवर्क, आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती।

0: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम. यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं चलते का नाम मस्ती। प्रोग्राम में आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम हो गया जनाब। और आज जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है वो भी जरा दोबारा रिपीट करते हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी अभी भी सुना स्टार्ट किया होगा तो उनको भी सवाल का जवाब आना चाहिए। और सवाल कुछ इस तरह है कि आप मुझे बताइए आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है। ठीक है, बहुत ही मुझे लगता है कि मैंने आज आसान सा सवाल आप लोगों से पूछ लिया है लेकिन कोई नहीं, इसका जवाब आप देंगे तो पता चलेगा कि ये आसान था या फिर मुश्किल था। ओके, जल्दी से आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं 8881 पर। आपके मैसेजेस बहुत ज्यादा जमा हो चुके हैं बड़ी तादाद में तो बिल्कुल आपके मैसेजेस की जाने बातें हैं। और यहाँ पर जो आप लोग मुझे गानों की फरमाइशें करते जा रहे हैं तो वो भी जरा शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे लेकिन हम जरा जो है ना थोड़े से आपके मैसेजेस की जाने बात जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे साथ सबसे पहला जो मुझे मैसेज मिला है वो चाचा खाले जुनेंजो का मिला है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा सिडो, कैसी हैं आप? उम्मीद है खुश होंगी। सफा खुश बाश अल्हम्दुलिल्लाह ता उदाय की आयो। और कश्मीर से अखलाक बलोच कहते हैं हाय सिदरा नाइस यो पिले तमा गानों लिखियो है। ठीक है बिल्कुल ताजी पसंद जो गानों हलायूं था। और हमारे साथ हैं जी फहीम शेख कहते सलाम अलैहिस्सलाम मदद अदा छाला खुश सफा चाकू सलेट कलम उबी और गानो लिखो अव ठीक है डेडिकेट मुखे आए। चलो ठीक है, आज तुम सभी गाना मुखे डेडिकेट कया है। फहीम भी गानो मुखे डेडिकेट कयो, चाचे भी गानो मुखे डेडिकेट कयो है। चलो ये गाना बुधी दिसनासी त डेडिकेट करण जड़ा है यार पैसे ता डेडिकेट कया तो भला ही हुंदा। अच्छा उन के अलावा जेके मनो सा के फेसबुक पे बुदंदा ना पोस्ट के लाइक एंड शेयर कर लो। ठीक है, और फहीम कहते हैं दादा आज मैं सवेरे से आपका वेट कर रहा था, कल मैंने देर की तो आपने मेरा गाना आधा चलाया था, मैंने नोट किया था। नहीं, वो गाना तो आपका पूरा ही चला था और पता नहीं शायद आधा चला होगा। और ये गोट मोमन तैयब थे बुक हबी बुला थे बु कहते हैं अल्लाह तमाम जो शो जबरदस्त आहे सॉन्ग बुधराय जो तेरा मेरा ही प्यार अमर हाजिर हाजिर। और ये मौजूद है वालेकुम असलाम सिदरा, आप कैसी हैं? आपका शो नाइस। सांगी सिटी से सैयद अहमदाश बुखारी हमारे साथ है विद माय फ्रेंड्स हैं ताहिर लुंड राशिद लाखो जहीर महर एंड रियाज जिस्कानी। ओके, ये सब भाइयों को वेलकम कहा जाता है। और सुल्तानपुर खां अब्दुल गनी जूने जो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सिदरा मुस्कान साहिबा शो नाइस है जवाब क्या बात है शेला जो गानों तव फरमाइश किया है। सो चलो पहले तमाम टॉपिक फॉलो किया तमाम जो टॉपिक से जवाब भी सही दिनों है सोचो तो असा शेला जो गानों बुधूँ था अही गानों भा सोने के डेडिकेट है जो नालो है अब्दुल गनी जूने जो।

ॾाढो खूबसूरत आहे गाने जी वाइब एतिरी कमाल जी आहे ॿुधी करे मज़ो अची वेंदो आहे. अच्छा हुन खां अलावा इहे हमारे साथ जी दादा आसमान और ज़मीन के बीच वाह वाह वाह वाह वाह वाह ताड़ियूं थी वञनि ताड़ियूं. बिल्कुलु तव्हांजो जवाबु दुरुस्त आहे. और चाचा ख़ालिद कहते हैं बेटा सॾु आसमान और ज़मीन के बीच इहा वरी कारा अची वई इसको बीच में नहीं आना था. और कहते हैं नहीं थोड़ा सा आपका जवाब थोड़ा सा गलत हो गया है. कोई बात नहीं कोई बात नहीं. और मज़हर अली हमारे साथ ही टॉपिक अगर रियल में देखा जाए तो जवाब होगा ओके ओके रियल में नहीं देखी आप वैसे देखी तो वो वाला आपका जवाब सही है. और आपने गाने की फरमाइश कर दी है ठीक है जी मैं कोशिश करूंगी सबके ही गाने लगा देंगे. और कश्मोर से अखलाक भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया ये क्या जवाब दिया ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आई. तो ठीक है जी गाना सुनते हैं जरा. बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं.

हा भई जंहिं तकलीफ़ ॾिनी उहा ई उन तकलीफ़ जो जेको आहे न दवा बि आहे मरहम बि आहे बिल्कुलु ईअं थींदो आहे असां इंसाननि खे लॻंदो आहे त जेके असांजे ज़िंदगीअ में ॾुख ईंदा आहिनि तकलीफ़ूं ईंदियूं आहिनि उहे सिर्फ़ु असांजे लाइ आज़माइशूं हूंदियूं आहिनि पर कई मरतबा ईअं बि थी वेंदो आहे त जेके माण्हू असांजी ज़िंदगी में हूंदा आहिनि यानी आसपास जेके बि असांजा माण्हू आहिनि उहे माण्हू बि असांजी आज़माइश जो सबबु बणजंदा आहिनि ऐं कुझु माण्हू अगरि असांजी लाइफ में मौजूदु हूंदा आहिनि त उहो सबर जी या फिर ॾिठो वञे असांजा सबर जेको आहे न उनखे मतिलबु सिंधी थोरी मुंहिंजी कची आहे मां चीज़ूं एक्सप्लेन न करे सघंदी आहियां सिंधी में त कुझु लोग जो हमारी ज़िंदगी में होते न वो भी आज़माइश के तौर पर आते हमारी ज़िंदगी में क्योंकि देखा जाता है कि हम उन लोगों को किस तरह फेस करते हैं और कितना हम सबर करते हैं जब वो लोग हमारी ज़िंदगी में मुश्किलों का बायस बनते हैं और वैसे ये चीज़ तो हमारे ज़हन में होती है कि भाई अल्लाह की तरफ से हमें जो आज़माइशें में होती है वो दुख या तकलीफ की सूरत में मिलती है लेकिन ऐसा नहीं होता कभी कभार इंसान भी हमारी ज़िंदगी में अगर आते हैं तो वो भी हमारी आज़माइश के तौर पर ही देखे जाते हैं तो कोशिश करें कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में आजमाइश के तौर पर आए हैं आपको लगता है कि ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए आजमाइश हो सकते हैं तो सब्र से पेश आए सब्र करें क्योंकि सब्र से ज़्यादा बड़ा हथियार इंसान के पास और कोई नहीं होता तो सब्र से काम लें ज़रा

डीजे ऑन मोड. अच्छा बिल्कुल आपके मैसेजेस पढ़ेंगे जी पढ़ेंगे. आपको कैसे भूलेंगे क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारे प्रोग्राम में रौनक आ जाती है. तो टॉपिक को फॉलो करते रहे हैं और यहाँ पर एक मिनट. अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है. हाय सुंदरा. अच्छा बस आर को हटाकर आए दीजिए ताकि सुंदरी बन जाए. कहते हैं हाउ आर यू. मैं ठीक हूँ. शो आपका वेरी नाइस है. दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची. अल्ताफ अली गादी बलोच आपको वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है. वैसे क्या ही सिदरा को आपने सुंदरा बना दिया. सो बहुत शुक्रिया. थैंक यू. मोहब्बतें हैं जी आपकी. और उनका अलावा हीवारो गानों पे साइन लिस्ट में आए गानों बदना सी आई जगी मानो सजा फेसबुक पे मौजूद आए पोस्ट के लाइक शेयर कयो. शाबाश.

जी बिल्कुल जी बिल्कुल, कुछ बातें वाकई ऐसी होती है जिनको भूलना नहीं चाहिए। और यहाँ पर अच्छा टॉपिक है जवाब, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फिजा भी दे दिया है, तो फिजा से मुझे एक बात याद आ गई। मेरी दोस्त है, मतलब कॉलेज फ्रेंड है फिजा, तो वो कल परसों शायद मुझे बता रही थी कि उसकी जो सांस है ना, तो वहाँ असानो प्रोग्राम मतलब बुधन दिया है उन्हें चीजें का सस आए, सो मुख्य चेपे वो टीचर आए बेसिकली, तो घर वेंदी आ चेपे जडी में मां घर वेंदी आए, तो मुझे अम्मी जी को ना तानो प्रोग्राम बुधन दिया आई, एक दफो मां चे मां समी ये मुझे दोस्त थई, तो चेपे ने या वर तुझी दोस्त काडा हुंदी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कसम से। वो कहती भाई मेरी सास भी तुम्हारा प्रोग्राम बड़े शौक से सुनती है, तो फिजा जी सर से असांगे बुधे और कह रही थी उनको मतलब शो में ऐड करना, मैं भूल गई थी कल परसों, आज मुझे अभी फिजा देखा तो याद आ गया कि हाँ फिजा ने कल परसों ये बोला था। तो बिल्कुल जी फिजा जी सर से असांगे बुधे पे बड़ी शौक से असांगे प्रोग्राम बुधन दिया है। हाँ अम्मी बिल्कुल माँ फिजा जी दोस्त है मतलब लाइफ टाइम का बैठी।

आज नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, याद कर लिया. गाना एंजॉय करें और गाने के साथ साथ हम जरा जाएंगे जी न्यूज ब्रेक की जाने, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे. आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे पूरे तीन बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. चलती का नाम मस्ती और चलती रहेगी पूरे पूरे तीन बजे तक.

खिते की लाइफ लाइन आए पानी के हथियार तौर इस्तेमाल करने की इजाजत न डींदासीं आलमी मुआहदन ते रूह मूजिब अमल थियण घुर्जे मका दिफाई मुआ

इस्तेमाल करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। आलमी मुआहिदनि ते रूह मूजिबि अमल थियणु घुरिजे। मका दिफ़ाई मुआहिदो बि कंहिं जे ख़िलाफ़ु न आहे। इस्लामाबाद मफ़ामत यादाश्त ते खिते में अमुन जे बहाली लाइ आम आहे। शिंघाई सहकारी कॉन्फ्रेंस जी सरबराही इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त दहशतगर्दी बि खिते खे संगीन ख़तरनि मां हिकु आहे। दहशतगर्दनि खे अफ़गान सरज़मीन इस्तेमालु करण जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। पाकिस्तान इलाइक़े में जटादार अमन जे क़याम लाइ परज़म आहे। ॾखिण एशिया मुकमल अमन खां सवाइ तरक़ीअ वारो हदफ़ हासिलु नथो करे सघे। पाकिस्तान आलमी कानून मूजिबि तकरारनि जो हलु चाहे थो।

0: मुल्क जे राजधानी इस्लामाबाद ऐं पिंडी में बरसाति तबाही मचाए छॾी। घरनि जूं छितियूं करण जे नतीजे में वॼणा फौत रोड रस्ता तलाउ जो ॾेख ॾियण लॻा। गाॾियूं मुकमल तौर ते ॿुॾी वियूं। इलेवन नालो भरिजण सबबि पाणी आबादी में दाख़िल। केतिरा ई घर ॿुॾी विया। नालाली में पाणी जी सतह में ख़तरनाक हद ताईं बाद बाद फ़ौज तलब। गवाल मंडी ऐं कटियारिया में बि सूरतहाल ख़तरनाक बणियल। पिंडीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रोडनि ते गाॾियुनि बदिरां ॿेड़ियूं हलण लॻियूं। बरसाती पाणी सब रहवासी घरनि ताईं महदूद थी विया।
1: सिंध काबीना आई आफ़ीस ऐं काबीना खे इदारे जी शिकिल ॾियण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन फीस बि 1,000 रुपया मुक़ररु। वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। सूबे जे कचे वारे ज़मीन जी सर्वे कराए नक्शा ठाहिण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सूबाई मालियाती वार्ड कमीशन जी बि तयारीअ लाइ अछरवासीअ खे कंसल्ट मुक़ररु करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। पीपी यूनिट जो बि नालो तब्दील करे सिंध पब्लिक पार्टनरशिप लिमिटेड रखियो वियो। पास्को खां 2,23,000 मैट्रिक टन ख़रीद करण जी मंज़ूरी। 3,00,000 टन कणक पास्को ज़रिए दरामद बि कई वेंदी।
0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो शगाई सहकारी कॉन्फ्रेंस जे इजलास दौरान मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सरबराहनि सां मुलाक़ातूं। वज़ीर आज़म चीन, रूस, तुर्की, ईरान, बेलारूस, अज़बेक ऐं ताजिक सदर सां मुलाक़ातूं कयूं। मुलाक़ातनि दौरान ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं।
1: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो बिश्केक में चीन समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे परॾेही वज़ीरनि सां मुलाक़ातूं। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। इसहाक़ डार चीन, ईरान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस जे परॾेही वज़ीरनि सां मुलाक़ात कई। परॾेही आफ़ीस मौजूदु मुलाक़ात दौरान ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं।
0: अमेरिका इस्लामाबाद मुफ़ाहिमत ते अमल करे त ईरान बि कंदो। अमेरिका वाइदनि जी भञकड़ी कई, जंहिं ते ईरान जवाब ॾिनो। शिगनाई सहकारी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे ईरानी सदर मसूद पज़दीशान चयो आहे त पाक, सऊदी ऐं तुर्कीअ जो दिफ़ाई मुआदो मुस्लिम मुल्कनि में इतिहाद ॾांहुं क़दम आहे। मुल्क मुतहद थियनि त इसराइल हमिलो करे न सघंदो। अमेरिका बि इस्लामाबाद मुफ़ाहिमत ॾांहुं वापसि आयो त ईरान बि तकिड़ो मुस्बत जवाबु ॾींदो।

0: टे वेझो पीरसन जो लाश हथ वारसन पारां कतल जो शक ज़ाहिर जुमशाही पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज जुमशाही फाटक वटां पंजवंजाह वरनि जे जुमन जाखरे जो लाश हथ संदसि मोटरसाइकिल भरिसां मिली वारसन पारां कतल जो ख़दशो ज़ाहिर करे छॾियो जुमशाही पुलिस जे रवैये ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो जॾहिं त इंसाफ़ जी घुर कई वई
1: दादू में अवामी फोरम जो ज़रिए पाणी जे खोट ख़िलाफ़ धरणो हारियुनि आबादगारनि ऐं शहरनि शाहजहान पार्क

0: ॻोठाणनि ऐं शागिर्दनि एहतजाज कयो। निंदो हुए जो बि उस्ताद जी बदली सबबु ॻोठु सिद्दीक ख़ासि किले जो प्राइमरी स्कूल बंदि थी वियो। ॻोठाणनि ऐं शागिर्दनि उस्ताद जी बदली ख़िलाफ़ु एहतजाज कयो। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त ॻोठ जे स्कूल में मुक़ररु उस्ताद बदली थियण बैदि स्कूल 6 महीननि खां बंदि आहे। नोटिस वठी उस्ताद मुक़ररु कयो वञे।
1: घोटी में अगोणे SHO काबिल भयो मथां पेका एक्ट तहत वधीक हिकु केस दाखिल। ॻोठाणे मलहण शर खे लाकअप अंदरि तशदुद ऐं तज़वीर जो निशानो बणाइण ते केस दाखिल कयो वियो। SSP तरफ़ां नौकिरी तां बरतरफ़ करण बाद आंदल सुंदराणी थाणे जो अगोणो SHO गुम थी वियो आहे।
0: मोरे में उस्ताद जे घर ते हमले ऐं फायरिंग ख़िलाफ़ु सियासी समाजी धुरनि जो एहतजाज। सिंध कॉलोनीअ में उस्ताद पीरल सियाल जे घर ते हमले ख़िलाफ़ु एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरनि जो चवणु आहे त पुलिस अहलकार घर ते फायरिंग करे नौजवान अली रज़ा सियाल खे ज़ख़्मी कयो आहे। नोटिस वठी इंसाफ़ फराहम कयो वञे।
1: जोही ऐं नवाबशाह में आपघात जा वाकिया। नौजवान ऐं पेश इमाम ज़िंदगी जो अंतांदो। जोही जे ॻोठु बचल खां रिंद में नौजवान अदनान रिंद पाण मथां पिसण जो फायर कयो। वारसनि जो चवणु आहे त नौजवान घरू मसलनि तां कावड़ जी घर जे कमरे अंदरि पाण मथां पिसण जो फायर कयो। नवाबशाह में मस्जिद जे मौलवी घर अंदरि फाओ खाई आपघात कयो। मंगलवार कॉलोनी जे मस्जिद जे पेश इमाम एकाट वरनि जे आयासना ज़िंदगी जो अंतांदो। घर अंदरि फाओ खाईंदड़ मौलवी जे आपघात जो कारण मालूम न थी सघियो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं जल्दी का नाम वसी प्रोग्राम में आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद होते हैं। प्रोग्राम में आप लोगों के मैसेजेस होंगे, आप लोगों के गाने होंगे, आप लोगों के प्यारी प्यारी सी बातें होती हैं जो प्रोग्राम में चार चांद लगा देते हैं। और इसी के साथ साथ बिल्कुल आपके मैसेजेस काफी सारे जमा हो चुके हैं, शामली प्रोग्राम रखे जाएंगे, लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी अभी सुना स्टार्ट किया है उनको वेलकम करते हैं। बाकी जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से लेकर मौजूद है उनको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में, तो जनाब वेलकम। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881। बाकी जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं वो सारा पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है। अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आ रही है, खास करके उन लोगों के ऊपर ना जिनको बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया उन्होंने कि हाँ जी भाई जान क्या हो सकता है आसमान और जमीन के दरमियान। तो बिल्कुल आप बताइए मजीद जो लोग बताना चाहते हैं। अगर आप भी टॉपिक को फॉलो करना चाहते हैं तो जी मोस्ट वेलकम, फॉलो कीजिए और मुझे बताइए आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है। फिजा तो बिल्कुल भी नहीं आती, फिजा को बीच में मत लाइए। और फिजा आजकल वैसे बड़ी मोटी हो गई है, दरमियान आ भी नहीं सकती। ओके जी, तो जल्दी से जो है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और उसके अलावा जो है तो मैं ऐसा करती हूँ आप लोगों के पसंद के जो गाने हैं ना वो भी साथ साथ हम जरा सुनते जाएंगे। अच्छा, गाने तो खैर लगाएंगे लेकिन आप लोगों की मैं क्या सोच रही हूँ कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं।

साथ ही मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई को खुश आमदीद कहा जाता है और चाचा खालिद लिखते हैं कि बेटा सिडो मेरे नसीब की खुशियां भी तुझको मिल जाए मेरी दुआ है गम ना तेरे पास आए क्या बात है जी बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच चाचा इतनी मोहब्बतों के लिए और हमारे साथ मकसूद मला मेरापुर से कहते हैं हेलो सिदरा मुस्कान आदाब आदाब सिदरा मुस्कान मुझे शाद बबर का गाना सुनाना सलाम न्यू था पाना जड़न के सही सही और जवाब जी को तुम्हारे नुआ चौथा ही वठे जवाब कोई कोन डींदई एड़ो जवाब हकीकत है बिल्कुल बिल्कुल मां समझी में न गाल के तो तमाम जड़ो जवाब कोई दई न तो सके सो बहुत शुक्रिया जी थैंक यू सो मच और मकसूद मला दोबारा मैसेज करते हैं मानो ये छो चवंदा आहिन तो हुजई नानो तो घुम लाड़कानो इसमें लॉजिक क्या है लॉजिक तो खैर मुझे भी नहीं पता मैं तब शायद पैदा भी नहीं हुई थी जब लोगों ने ये कहना स्टार्ट किया था और बाकी हाने खबर तो मानो चा चवंदा आहिन हुजई नानो तो छड़ लाड़कानो क्योंकि लाड़काना में बहुत चिंचियां हो गई और चिंचियां की वजह से जो है ना वो लाड़काना छड़ने को दिल करता है तो बाबा ये जगह चिंचू आए ना इन बेजार कर चिंचन बस छाई चवा हाँ मां मुख्य अलह छो मतलब चिंची रोड से हलंदी आते ही लगन ही चलता फिरता मतलब जो ना खतरो है छो तो मुँह कदें भी कें भी चिंचीअ में ब्रेक भी ना ॾिठो ऐं साइड मिरर्स भी ना ॾिठा बसि हू अंधा धुन हलाईंदा आहिनि चिंची ऐं हुनजी नज़र हेॾे होॾे हूंदी आहे रोड ते त भई ग्राहक बीठो हूंदो हेॾां होॾां बसि ॾिसंदा आहिनि हुननि खे बिल्कुलु ख़बर न पवंदी त बाबा को क्रॉस करे थो या का गाॾी अचे थी बसि हुननि खे इहो हूंदो आहे सिर्फ़ु हेॾे होॾे ॾिसंदा आहिनि नो ब्रेक नो साइड मिरर अलाए छा आहे बाबा चिंचन वारनि खे अगरि चिंचन वारा मूंखे ॿुधनि था बाबा थोरो ॾिसो अलाह खे मञो ॿियनि जी सिहत जो ॿियनि जे ज़िंदगी जो ख़्यालु कयो ऐं हिकु त तव्हां पंहिंजे चिंचीअ में ब्रेक लगायो ॿियो साइड मिरर्स लगायो तव्हां ख़बर पए त हेॾां होॾां कोई अचे त कोन थो छो त इलाही दफ़ा असां सां ईअं थियो आहे असां ईअं निकिरंदा आहियूं त चिंची बाबा डस करे अचे लॻंदी आहे सो इट्स वेरी डेंजरस बाबा चिंची मतिलबु चलता फिरता ख़तरा सो लाड़काणे में चिंचिन जो एॾो तादाद वधी वियो आहे मूंखे मतिलबु चवण में बि थोरो अजीब फील थिए थो न कयो बाबा ॾिसो अलाह खे मञियो

क्या बात है यहाँ पर कश्मीर से अखलाक भाई कहते हैं स्टूडियो का बाहर नन्न किरजान चिंगची वारा स्टूडियो बाहर यहाँ गोल गोल फिरनी था नन्न वो तो वैसे ही फिरना है बाबा इन मेरे को शकु कोने पर चिंगची वारन की वजह से मुख्य तो फूबिया वे जी वाना रोड फूबिया थी वो है तमाइन से करे स्कूटी भी न थी सीखी सका यानी कि तवा डिसो एनो तवा पांजे इन सिटी जो सत्यो नाश करे छडियो है तो तवा में बिल्कुल भी सिविक सेंस कोने को रोड सेंस कोने को मां इलाही टाइम का मतलब या चीज ऐसा पाई चिंगचू हलायन केर पे सफा नंडड़ा नंडड़ा बार जे मस फीडर हथ में होजे उनन के चिंगची दे छदन दा घर वाला वठो पुट हलायो रोड ते जेको थे उन सा केर जिम्मेदार आ भला सो बारन के ते एटलीस्ट तवा चिंगचू न दियो बाबा यो जेको ता जुल्म कयो था पान सा पांजे बारन सा आई बियन मानन सा भी इन जो थोड़ो ख्याल कयो जेके भी असा के ओए मानु बुदन पया जेके चिंगची ड्राइवर आ तो तवा ख्याल कयो बाबा पांजो पांजे बारन जायरा अगर ये हादसा थन था तो तमाजी बारन जो भी तो नुकसान थे पयो ना सो नंडा नंडा बार जेके चिंगचू हलान पया इनन के तो एटलीस्ट तमा थोड़ो कंट्रोल में रखो बाकी तो ये मुखे न लगंदो आ तो सुधरी सके तो समाज बागे सा चवण न चवण सा कुछ भी न थिनो बाकी यो आ तो वाकई इंसान पान ख्याल करे पान ख्याल कयो वही थोड़ो बेन जो भी ख्याल कयो सठी गाल हुंदी आ सो ये बहुत ज्यादा भाषण हो गया मुझे लगता है कभी कभी मैं कुछ ऐसी बातें बोल देती हूँ प्रोग्राम में जो शायद मेरे ऊपर सूट नहीं करती लेकिन हाँ ये तमाम चीजें जो है ना वो इरिटेट कर रही है आजकल मुझे और ये हमने गाना लगाया जो कि शायद बबर की आवाज में गाना है और इस गाने की फरमाइश मुझे पता नहीं किसने कर दी थी दो शायद लोग थे जो शायद बबर का गाना सुनना चाहते थे ये गाना उन दोनों को डेडिकेट

हाय ॾाढो भलो गानो जेको तव्हां ॿुधो पिया अच्छा मक़सूद केॾे वॾो खूनी गानो हलायो अथई शमन मिराली जो बिल्कुलु बिल्कुलु ही बि खूनी गानो तव्हां ॿुधो अच्छा फ़हीम केॾे दादा रिक्शा वाले बि कम नही है कुझु टाइम पहिले में फुल स्पीड आ रहा था अचानक रिक्शे वाला आ गया मेरी बाइक स्लिप हो गई और अगर ब्रेक नहीं लॻाता तो यही बात है ना बिल्कुलु बिल्कुलु वैसे मूंखे त अॼुकल्ह लाड़काणे में जेको न रिक्शा सफ़ा घटि नज़र अचंदा चिंग चिंग जो तादादु बाबा हेॾो हेॾो थी वियो आहे चिंग चूं तो वांदो जॾहिं ईअं मतिलबु ट्रैफिक टाइम थींदो आहे न पोइ उलझन थींदी आहे उलझन सम्झो था

जी बाबा सखर में या कराची में या मुबदुआ खैरापुर में भी चिंग चुनते बेन थे लाए सो थे लाड़खाने में भी करण खुर जी माँ यो रिक्वेस्ट कर एप्लीकेशन जंग था बिल्कुल करूं बाबा करूं इन्हें के कदम कयो लाड़खाने में न तो वाकई असांगे नानो थे तो असां छड़े वेंदा सी लाड़खाने

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाणी खिते जे माण्हुनि लाइ लाइफ लाइन आहे। पाणी खे हथियार तौरु इस्तेमालु करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। पाणी खे सियासी मक़सदनि लाइ हथियार तौरु इस्तेमालु कयो वियो त भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। सुभाणे सहकारी कॉन्फ्रेंस जे सरप्राइज़ इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त आलमी मुआहिदनि ते रूह मूजिबु अमल थियणु घुरिजे। मके दिफ़ाई मुआहिदो बि कंहिंजे ख़िलाफ़ु न आहे। इस्लामाबाद मुफ़ामती यादाश्त बि खिते में अमुन जी बहाली लाइ अहम आहे। दहशतगर्दी बि खिते खे संगीन ख़तरनि मां हिकु आहे। पाकिस्तानी इलाइक़े में जटादार अमुन जे क़याम लाइ पुरज़म आहे।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: पहजो शहर, पहजो घर, सकरंट, आई सकरंट जो आवाज
3: GFM 90.8।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

काफ़ी चयो त किन जे मुंह में मिसरी किन जो वात गुलाब से माण्हू लाजवाब लुत्फ़ जिन जे लफ़्ज़नि में। सो जनाब अवां जे मोहबतुन अवां जे प्यार ऐं पंहिंजा पंहिंजे रंगनि खे शुरू करण खां पहिरियों जेको पहिरियों रंग असां शुरू कयूं पिया उन पहिरिए रंग खे शुरू करण ताईं कुझु मैसेजेस अची चुका आहिनि। जी हा, असांखे कुर्बान अली खासकेली साहब ज्वाइन कयो आहे झंडे मरी खां, ऐं अवां जूं तमामु घणी महिरबानी मोहबतूं। ऐं दानिश बकारी सफ़र दौरान असांखे ज्वाइन कयो आहे, अवां जूं मोहबतूं महिरबानियूं। ऐं खोड़ सारियूं अवां जूं मोहबतूं। अॼु असां अवां जूं कॉल्स वठंदासीं मैसेज, ऐं तरीक़ेकार इहो ई हूंदो, तव्हां टाइप करे MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे गुट शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो, 8881 ते मैसेज मोकिलियो। तकिड़ो अलाए छा चयो, तव्हां इहो सोचींदा हूंदो। हा, टाइप करियो MTI, हुन खां पोइ स्पेस ॾियो, पंहिंजे गोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, ऐं 8881, यानी 3 दफ़ा 8 ऐं 1 ते सेंड करे छॾियो। हाणे मैसेज अञा बि तव्हांजा पहुचंदा। मैसेजनि जी बरसाति जेसी ताईं तव्हां ताईं पहुचे, तेसि ताईं आवाज़ ई दुनिया जा गुलाब ऐं उन्हनि जी ख़ुशबू अवां ताईं पहुचायूं था। जेतोणीक जेको आवाज़ तव्हां लाइ प्ले करे रहिया आहियूं, इहो आवाज़ को नओं ट्रैक रिकॉर्ड करण लाइ कंहिं नए स्टूडियोज़ में न ईंदो, छो त उहो आवाज़ असां खां विछड़ी चुको आहे। पर जेसि ताईं सिंध जा सुर सलामत रहंदा, इहो आवाज़ सिंध में गूंजंदो रहंदो। उहो आहे अलाह ॾिने ख़ासि कैली जो आवाज़। अचो त कच्छी ॿुधूं।

चेतारे चवंदियोसि ॻाल्हियूं के सजणे, चेतारे चवंदियोसि ॻाल्हियूं के सजणे, जे मुंह मुक़ाबिल थियासि त वयूं सभु विसरी। हलारे भेट धणीअ जे हिन ख़ूबसूरत शहर सां अव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार, छो त अव्हां ॿुधो पिया सिंधड़ीअ जी शाम जेका आहे अव्हां जे नाम ऐं अव्हां जो आरजी अव्हांजो पंहिंजो यूनुस बकारी अव्हां सां मुख़ातिबु आहे। अव्हां ॿुधो पिया GFM 88 रेडियो नेटवर्क खे, GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे एप सां गॾो गॾु जेके पूरी दुनिया में असांखे ज्वाइन कनि था, उहे एप ते असांखे ज्वाइन करे सघंदा। यानी अव्हां सर्च कंदव गूगल ते GFM 88 रेडियो नेटवर्क, असांजी सभई स्टेशन तव्हांजे साम्हूं हूंदियूं, तव्हां पूरी दुनिया जे कहिड़े बि कुंड में ॿुधी सघो था। ऐं जेकॾहिं तव्हां असांखे पाकिस्तान जे अंदरि ॿुधो था तॾहिं बि एप ते ॿुधी सघो था। असांजी ऑफिशियल जेका आहे उहा एप आहे, हुन ते ॿुधी सघंदव। ऐं गॾो गॾु जेके रेडियो सेट ते असांखे महिरबानी ज्वाइन करे चुका आहिनि, उन जे लाइ सिंध जे 8 वॾनि शहरनि जूं रेडियो स्टेशन तव्हां साण लाइव आहे। उन्हनि 8 स्टेशननि ते यकीन हिकु ई वक़्तु सिंधड़ी जी शाम शो हले पियो। ऐं मूंखे चवंदा आहिनि आरजी यूनुस बकारी, अव्हां खे छा चवंदा आहिनि उन जे लाइ तव्हां हिकिड़ो मैसेज कंदव, टाइप कंदव MTI स्पेस पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखण खां पोइ पंहिंजो नालो ऐं 88 81 888 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। अव्हांखे नंबर बि ॿुधाए छॾींदासीं, तव्हांजूं कॉल्स बि वठंदासीं। सो उहो नंबर तव्हांखे कुझु मैसेज रीड करे वठां, पोइ कॉल नंबर ॿुधाए छॾींदुसि, जंहिं ते तव्हां सां हाल अहिवाल बि थींदा, दिलियूं ॻाल्हियूं बि थींदियूं। सो जनाब असांखे मैसेज ॻोठ हाजी सहते खां पहुतो आहे। जी जनाब, असांखे यादि कयो आहे हाजी सहते साहब, महिरबानी, मिठो माण्हू भलीकार शहबाज़ ख़ासकेली, मिठो माण्हू ॿुधे पियो, साले सोलंगी, ताज मोहम्मद सहतो, आसिफ़ सहतो ऐं असद सहतो ॿुधनि पिया। अव्हां जा वॾा वॾा अव्हां जूं मोहबतूं, अव्हां जूं भलायूं ऐं भाल साला साल यादि रहंदियूं, जो अव्हां असांखे यादि कयो, अॼो किशो जो हिसो बणिया। असीं अव्हांखे चऊं था भलीकार कुर्ब तव्हांजा, थैंक यू वेरी मच, भलीकार भलीकार भलीकार। एंड जनाब ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु आहे हाणे, सो उन जे लाइ लिखो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88 81 ते स्पेस ॾियण खां पोइ जॾहिं तव्हां 88 81 ते मोकिलींदव त असां वटि ज़रूरु पहुचंदो। पोइ मोकिले छॾियो असांजे मैसेज, छो त असीं वञे मैसेज जो सेड़ो कंदासीं ऐं कॉल नंबर तव्हांखे ॿुधाए था वठूं, ताकी तव्हांजूं कॉल्स बि अची वञनि। सो जनाब कॉल नंबर जे लाइ असांजो नंबर आहे 0334 3525786। वरी सोचींदा हूंदो त अञा बि सवली सिंधीअ में ॿुधायां, त पोइ 2 3 4 3 5 2 5 7 8 6 सफ़ा सवली सिंधी में अञा ॿुधायां थो, 2 3 4 5 7 8 6

0: जी जनाब गोठ सवाली डंगणू खां असांखे ज्वाइन कयो आहे डंदे शहर जे वेझो अमीर बख्श ऐं जाहिद अली डंगणू साहब मिठा माण्हू अवां जो तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं गोठ हाजी हाजी हुज़ूर बख्श रिंद खां असांखे ॿुधनि पिया शादी खान रिंद ऐं अवां सां शामिल आहे दीन मोहम्मद रिंद अयाज रिंद अवां जूं तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं नंढड़ो हसनैन रिंद अवां सां गॾु ॿुधे पियो तमामु घणियूं महिरबानियूं भलीकार थैंक यू अवां फरमाइश लिखी आहे फौज़िया जी ज़रूर कोशिश कबी ज़रूर साईं ज़रूर ऐं गोठ अच्छा जी अली छलगिरी साहब जो मैसेज पहुतो है अली छलगिरी वाली महिरबानी सैयद अली सईद अली लिखण तव्हां चाहियो आहे पर सईद जी जॻहि ते सैयद लिखिजी वियो आहे सो बहरहाल सईद अली छलगिरी साहब तव्हांजो महिरबानी मोहबतूं आबाद हुजो शाद हुजो तारनि में चंड खीर में खंड में त पे दोस्तो जेकॾहिं असांजो आवाज़ अवां ताईं पहुचे पियो त जल्दी जल्दी असां जल्दी सां शामिल थी वञो ताकी ख़बर पए त केरु असां शामिल थिए थो ऐं केरु असां सां गॾु हूंदो पोइ उन जे लाइ असां बि बिना देर जे अने मैसेज शामिल कयूं पिया हाजी ग़ुलाम ख़ासि केली झंडे मरी खां असांखे क़ुर्बान अली ख़ासि केली साहब जॉइन कयो क़ुर्बान तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी वॾा वॾ अवां जा अवां असां सां गॾु हूंदा आहियो ऐं अॼु बि शामिल आहियो थैंक यू अव्हांखे बि चवंदासीं भलीकार तमामु घणी मोहबतूं ऐं जनाब असांखे साले पट खां ज्वाइन कयो आहे इरफान अली थेबो साहब इरफान अली थेबो साहब तव्हांजूं मोहबतूं तव्हां असांखे खबड़ी भिट खां ॿुधो पिया मोहबतूं तव्हांजूं भलीकार चवंदासीं ऐं हा दोस्तो जेकॾहिं अवां कॉल करे शामिल थियण चाहियो था त जे असां कॉल थोरो जल्दी वठंदासीं छो त असांखे सेगमेंट्स अॻियां हली शुरू करणा आहिनि त कॉल में जे असां अवां सां कंदासीं हाल अहिवाल सो कॉल आहे 2044525786 0334352578 6 उन ते असांखे मैसेज मोकिले छॾियो ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु हूंदो अॼोकी शो में शामिल त पोइ दोस्तो महिरबानी क़दरदानो भेनरो ऐं भाइरो तव्हां कॉल बि करियो ऐं SMS कयो ॾिसूं था SMS केरु कंदो ऐं कॉल केरु कंदो कॉल जो बि नंबर असां तव्हांखे ॾेई छॾियो आहे SMS जो नंबर ॾेई छॾियो आहे हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे फ़िलहालु हिकड़ी कॉल अची चुकी आहे शामिल करियूं था ॾिसूं था त असां सां गॾु केरु जुड़ी चुको आहे हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु साहब ऐं किथां खां
1: जी बाबा कंदो
0: हा पंहिंजो नालो ॿुधायो
1: मोहम्मद
0: साले भाउ कहिड़े ॻोठ शहर खां टंडो मोहम्मद खान शहर वेझो कहिड़े ॻोठ खां ॿुधो पिया अच्छा अच्छा ॿियो तव्हां सां केरु ॿुधे पियो
1: मुंहिंजा घर वारा आहिनि भाउ आहे चाचो आहे मुंहिंजो मोहम्मद
0: हा
1: यार मोहम्मद मोहम्मद अनीफ मामा यूसुफ
0: हा
1: जी कल असां प्रोग्राम ॿुधो पियो तव्हांजो पर ॻाल्हि इहा आहे त नंबर तव्हां जल्दी पे ॿुधायो ॻाल्हि कोन पे असांखे नंबर माना आयो न पे सम्झ में
0: हा अॼु सवलो सम्झ में अची वियो नंबर हा शुक्र थियो शुक्र बसि तव्हांजे करे ई त असां आहिस्ते आहिस्ते ॿुधायो मिठा भाउ हा महिरबानी तव्हांजी लख थोरा मिठा भाउ लख थोरा उहो जनाब ॾिसंदासीं त कॉल ते असां सां गॾु ॿियो केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम हलो आवाज़ कटिजी वियो आहे इन करे ॾिसूं था कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां जी छा हाल आहे क़ुर्बान तव्हां ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो आवाज़ घटि पियो अचे तव्हांजो थोरो हा हाणे आवाज़ सही पियो अचे ठीकु आहे कहिड़ी ख़बर चाह रहा
2: मुंहिंजो प्रोग्राम तव्हांजो भलो हले पियो ॿुधूं पिया शाम जे पहर में जेकी तव्हां फरमाइश हलाई हलंदो ख़ासि केली जी बिल्कुलु
0: आमीन आमीन क़ुर्बान भले अगरि आऊं फरमाइश तव्हां खां कयां त तव्हां असांखे थोरो गाए ॿुधायो त कहिड़ो कलाम ॿुधाईंदा
2: अॼु तव्हांखे कलाम गाए ॿुधायूं
0: पर थोरो ॿुधाईंदे छो त मूंखे ब्रेक वठणो आहे
2: हा बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधायूं
0: था हा ॿुधाए जल्दी ॿुधायो
2: मुझे महबूब के शाम तुझे जाना उदास
0: साईं महिरबानी लख थोर मौजूद ख़ातिन हज़रात इन ते शॉर्ट ब्रेक जो टाइम थी चुको है ऐं असां खे शॉर्ट ब्रेक वठणो आहे असां अॼु खोड़ ॻाल्हियूं कंदासीं दिलचस्प ॻाल्हियूं कंदासीं पर तव्हां हाणे कॉल फ़िलहाल न कजो ॿ टे मिंटनि जो ब्रेक हूंदो सफ़ा शॉर्ट ब्रेक आहे केॾे न वञिजो छो त हिकिड़े ॿिनि मिंटनि जे ब्रेक खां पोइ जॾहिं मां तव्हां वटि वापसि ईंदुसि दिलि जूं ॻाल्हियूं तव्हां सां करणियूं आहिनि कहिड़ियूं ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि छो त शाम जो पहर नओं अव्हां जे ऐं अव्हां जो पारां असांजे लाइ छा आहे गीत ॿुधाईंदव शायरी ॿुधाईंदव ॻाल्हियूं कंदव टहक ॿुधाईंदव जेको कुझु ॿुधाईंदव अॼु हूंदासीं गॾु गॾु त पोइ असां सां गॾु रहिजो GFM 88 रेडियो नेटवर्क वारी ख़िदमत में असां गॾु रहिजो
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदा पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले

0: ਸਾਈਂ ਦਾ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਣੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ओके शायद कॉल ड्रॉप थी वही है सो दिसूं था हाने कॉल ते केर आहे आई हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जिया सुबह खुश है खैरा
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह केर साहब है किथा का
1: नो तो थर पार करना रामचंद कुमार मकवाणो मुखातब
0: जी छा हाल है रामचंद खुश है ठीक है
1: अल्लाह या करम लगा तवा जी टीम सारी खुश हुई थी
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुआ लगी पई है अच्छा आवाज कद भी केर पे बुदे
1: दोस्त बुधन पे तवाजे प्रोग्राम तमाम सुठो आवाज ते रेंज जरूर कट रही बे बात बुधो
0: अल अच्छा भला मौसम थदी लगी पई है थरे जी भूरी भेटे ते ता बुधो पे नोटे मा त जेकरे तमा थरे जे के फनकार जो या के फनकार जो आवाज जोंगारे बुधायो
1: बिल्कुल बुधंदा से फौजिया तुमरे जो कलाम
0: वो त आऊं बुधराई दिस उनला बैठो ही मुजी ड्यूटी है ता गाना बुधा पई अवी बुधायो कदे कदे असन जी फरमाइश पूरी करयो
1: बुधाय ना बिल्कुल बुधाय
0: ना हप बुधाय बुधाय बुधाय हाने बुधाय
1: आई रे श्रावण तिजे रे बारिश आई

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, जबरदस्त। थैंक यू थैंक यू।
1: दरबार तेरा ले डालना कदारे कणगी साथ बड़के पकेड़े बड़के हमें ता मोकलो दे।
0: हुए हुए, थैंक यू भलीकार चवंदास। जबरदस्त आवाज तवा जो आई हाने दिसंदा जी जी दिसंदा से हाने कॉल ते केर। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। केर साहब है किथा का?
2: इरफान अली थेबो तालका साले पद खबरी बिट गुलाबी संगत खान ता संगत।
0: छा हाल है इरफान थेबो साहब? खुश है? ठीक है?
2: अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक ठाक। तां बुधायो कि आयो? ठीक आयो
0: अल्लाह सही जैसा ने तव जो दुआओं। इरफान है
2: केवे थी त हां तां से कोई सॉन्ग बुधाए जे?
0: वाह वाह थी विंदी
2: तवा जो आहे
0: मुजी बुधन जो मूड आए। बिल्कुल बुधायो बुधायो बुधायो।
2: बिल्कुल भी मूड में आयो सफा।
0: अच्छा असल असल खबर छा है त एकडो असा गानो बुधो हाने थर जी भिट रे बैठल असने प्यारे बुधंदड़ भा का बियो वरी बी भिट है जेका सखर जिले में आए खबड़ी भिट उते हमरा बैठो दिसना एकडी भिट का बी भिट ताई जेको आवाज गर्जे तो वो सिंध जो आवाज केडो होंदो शाम जी शाम जो टाइम है प्रोग्राम जो नालो पाए सिंधड़ी जी शाम त पे खबड़ी भिट थर पार कर न बल्कि खबड़ी भिट सखर जेका सालेपट में उता का तवा ने बुधाए छा था बुधाए जी

0: थैंक यू वेरी मच तमाम घणी महिरबानी टाइम वक्त आहे ब्रेक जो पर हिकड़ी कॉल ॾिसूं था केरु हलो अस्सलाम वालेकुम हलो ओके जनाब असां कॉल वठंदासीं कमर्शियल ब्रेक खां पोइ त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थी चुको आहे हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक आहे बाक़ी ॻाल्हियूं ब्रेक
1: अजरक के रंगों से रंगी
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: बधाई हूँ
1: सलामकुम
0: शुक्र है जी जी अदा दिलीप केर पे बुदे
1: क्या
0: वालेकुम अस्सलाम अच्छा भला जिक्र अवां के चोजे थोड़ो गुनगुनाए बुदायो थोड़ो गाए बुदायो गाए नींदो आ न मुश्किल छो आ पेरी सवेरे जिसकाणी साहब के बुदायो पे रोण आई गाएण हर मानो के आवाज़ जो मसलो तो आई कोन्हे न असां तोड़ी चऊं था रूबरू आपदा परीन वांगर गाए ॿुधायो

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कस्टम्स हाउस से कब्जे वाली कोशिश भी नाकाम बनाई गई। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 10 खारजी दहशतगर्द मारजी विया। दहशतगर्दन की फायरिंग दौरान बिन कस्टम्स ऑफिसर समेत 6 जवान शहीद थिया। सिंध हुकूमत पारां लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीमन ते होर, पर वजीर तरमीमन जो जायजो वठण लाइ सूबाई वजीरन ते बदल कमेटी जोड़े छॾी। सीनियर वजीर शजीलना मेमण, सूबाई वजीर नासिर शाह, सईद खानी, जियाउल हसन अंजार, दशमी आलम ऐं सलीम बलोच कमेटी में शामिल। पर वजीर मादरी शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास, सूबाई मालियाती एवार्ड कमीशन जी तयारी लाइ अशरफ वास्ती कंसल्टेंट मुक़रर। इजलास खे मकानी कानून में तरमीमन बाबति ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन जा अख़्तियार ऐं ज़िमेवारियूं वाज़े कयूं वेंदियूं। वॾे वज़ीर मुअद्द अली शाह चयो आहे त मकानी इदारनि खे वधीक फ़ाल ऐं जवाबदेह बणायो वेंदो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़।

0: नींद में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जी बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 किस्तन ते प्री कास्ट आरसीसी घरन जो पक्यू छिटू लगरा लाए खुशखबरी छा चाहो था अवां जे घरन जो छिटू पक्यू हुजन त कैश ए किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छिटू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ए सस्ते में सस्ती छिट लगराण लाए राबतो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842
3: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: हुन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राबितो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
5: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, सिंध का हर चप्पा हर गोशा,
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा,
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

मोहम्मद जान आरडाई भलीकार चवंदासीं शो में अवां खे आमीन आमीन लखत वारा तव्हां जा तव्हां सां कॾहिं बि केरु पियो ॿुधे महिरबानी लखत थोरा अच्छा अच्छा अच्छा भले तव्हां गाए ॿुधाए सघंदो कुझु न कुझु न बैत लाइ अॼु असां आहियूं अॼु असां अव्हां खां ॻाइण ॿुधंदासीं हा ॻाइण ॿुधाए भले हिकिड़ो ई असांखे सिट ॿुधायो पर ॻाए ॿुधाए ॾिसूं तव्हांजो आवाज़ कहिड़ो आहे

0: जी जी बुध पे भाई जान बुध पे लख थोरा लख थोरा ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केर हलो अस्सलाम वालेकुम केर साहब ऐं किथां खां छा हाल आहे साईं ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो रब पाक जे रहमतुनि में हुजो आबाद हुजो अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे
1: मूंसां गॾु मुंहिंजो नंढो ज़ैनुल आबिदीन भाकरे पियो ॿुधे मूंसां ॿियो भाउ आहे नादीन वीचारो उहो बि ॿुधे पियो मां पाण नादीन आहियां
0: जी जी
1: हा ॿियो मुंहिंजा मामा ॿुधो तव्हां कंबर शहर खां
0: जी जी नाला वठी वेठो नाला हुननि जा खणो
1: जी हा आसिफ़ अहमद नवाज़ सिंधी और फरहान कोरी तारिक कोरी और ज़ैब कटवर मुंहिंजो नालो पंहिंजो
0: जी जी ज़ैब
1: ऐं ज़ैनुल आबिदीन कटवर बिलावल कटवर मुसीब रहमान
0: महिरबानी लख थोरा साईं लख थोरा आमीन आमीन सुम आमीन लख थोरा ओके जनाब ॾिसंदासीं त हाणे कॉल ते असां सां केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम जहिड़ा कहिड़ा आहिनि प्यार दुआ
0: जी अलहमदुल्ला केरु साहब ऐं किथां खां
2: जहिड़ा पलकार खां बरकत
0: जी अदा बरकत लख थोरा मां त गॾु बि केरु पियो ॿुधे

0: सरकार कर खां गुलाम रहीम बलोच।
1: जी गुलाम रहीम बलोच साहब, लख थोरा वांजा याद करण जे लाए केडी खबर चाह रहे?
0: तबियत सही है सर, कीअं तबियत?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, तबियत वीआईपी लॻी पई आहे
0: माशाल्लाह। काफ़ी दिन खां पोइ अवांजो आवाज़ ॿुधो थी, तमामु दिल खे ख़ुशी ऐं सुकून मिलियो।
1: कहिड़े कुर्ब तव्हांजा ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, महिरबानी, मोहबतूं मिठा माणो। वालेकुम असलाम, कुर्ब साईं लख थोरा ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम
2: वालेकुम।
1: जी केर साहब ऐं किथां खां? जी नालो कोन था ॿुधायो? कावड़े आयो? नाराज़ हुयो? अच्छा ठीकु आहे, नाराज़गी आहे त मां तव्हांखे बसि मिंत करे सघंदो, कलाम ॿुधाए सघंदो ऐं तव्हांखे तव्हां राज़ी थी वञो। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम। जी केरु साहब ऐं किथां खां? जी भुटा भा, ब्रेक जो टाइम अची वियो आहे, तव्हांजी कॉल जूं महिरबानी लख थोरा, ऐं जेकर तव्हां कंहिंजो नालो वठो भई जल्दी जल्दी वठी वठो। महिरबानी लख थोरा कुर्ब। ओके मोज़िस ख़ातिम, हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक आहे, ब्रेक खां पोइ मां ईंदुसि ऐं वरी पोइ अव्हां खां मोकिलाए हलियो वेंदुसि, छाकाणि जो 45 वारो ब्रेक सफ़ा शॉर्ट ब्रेक आहे।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद

0: जो न थी आण औरतुन मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जी एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी है फुर्दगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, क्यों रही बहार की कमी। बस किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी। बस वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब गर्द उठे। जख्म तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।

0: of coercion, nor can it ever be exploited for political leverage. The treaties governing our shared waters are solemn binding international commitments. They are not matters of political conveniences to be cast aside at your will. They must be honored unconditionally in both letter and spirit.
1: पाणी खिते जे माण्हुनि लाइ लाइफ लाइन आहे. पाणी खे हथियार तौर इस्तेमाल करण जी इजाज़त न ॾींदासीं. पाणी खे सियासी मक़सदनि लाइ हथियार तौर इस्तेमाल कयो वियो त भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो. शिंघाई सहकारी कॉन्फ्रेंस जे सरकारी इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त आलमी मुआहिदनि ते रूह मूजिब अमल थियणु घुर्जे. मका दिफ़ाई मुआहिदो बि कंहिंजे ख़िलाफ़ नाहे. इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश बि ख़िते में अमन जी बहाली लाइ अहम आहे. दहशतगर्दी बि ख़िते जे संगीन ख़तरनि मां हिकु आहे. पाकिस्तान इलाइक़े में जटादार अमन जे क़याम लाइ पुरज़म आहे. ॾखण एशिया मुकमल अमन खां सवाइ तरक़ी वारो हदफ़ हासिल नथो करे सघे. सिंध हुकूमत पारां लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीमनि ते ग़ौर, पर वज़ीर तरमीमनि जो जाइज़ो वठण लाइ सूबाई वज़ीरनि ते वधल कमेटी जोड़े छॾी. सीनियर वज़ीर शर्जील नामिमण, सूबाई वज़ीर नासिर शाह, सईद ग़नी, जालंजार, नज़मी आलम ऐं सलीम बलोच कमेटी में शामिल. पर वज़ीर मुआद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास. सूबाई मालियाती अवार्ड कमीशन जी तयारी लाइ अशरफ वास्ती कंसल्टेंट मुक़रर. इजलास खे मकानी कानून में तरमीमनि बाबति ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन जा अख़्तियार ऐं ज़िमेवारियूं वाज़े कयूं वेंदियूं. वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त मकानी इदारनि खे वधीक फ़ाल ऐं जवाबदेह बणायो वेंदो.
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में बे ज़बरदस्त हवा. रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम. बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें. इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें.
4: अर्जेंट ब्यूटी क्रीम हर किस्म के स्किन को दे फ्रेश ग्लो और गोरी रंगत. अर्जेंट ब्यूटी क्रीम
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम.
5: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज.
6: अजरक के रंगों से रंगी,
7: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
6: सिंध के दिल से निकली आवाज
7: जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध.

0: लाज़मी आहे या तव्हांखे खटियूं जेके आहिनि ओगरा सूर बि थिए थो ऐं भर्ती बि थिए थी, मतिलबु पेट भरिजी थो वञे। अच्छा, पुठनि में बि सूर थिए थो। ऐं तव्हांजी घरवारीअ खे ॿाह ऐं टंग में सूर
1: आहे?
0: चङो, ठीकु। जेको आहे तबियत ॾेखारण जे लाइ अचणु चाहींदा त उहे अचण खां पहिरियों डॉक्टर साहिब खे फ़ोन कनि। इहो ई नंबर आहे 0348-40-40-217। इन ई साॻे नंबर ते कॉल करे तव्हां अची सघो था। अच्छा डॉक्टर साहिब, इहे पहिला हमारा जो कॉलर है उसका तालुक मोरो से है। उसका ये कहना है कि मेरी वाइफ को टांग में और बल रहा है, मगर अब जो है उसे टांग और बाजू में दर्द है, तो क्या ये मैदे का मसला हो सकता है?
2: देखिए, मैदे का मसला अपनी जगह पर एक अहम मसला है, और बाजू और टांग का मसला जो है उसका मैदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता।
0: ठीक है,
2: लेकिन अंदरूनी तौर पर हमारा जिस्म जो है वो एक दूसरे के साथ मरबूत एक सिस्टम होता है।
0: ठीक है,
2: हम कभी भी किसी भी मर्ज को ये नहीं कह सकते कि ये अकलौता किसी एक ऑर्गन का मर्ज हो। ये जब भी कोई मर्ज होता है तो उस मर्ज के पीछे जो है ना आसपास के तमाम ऑर्गन्स जिम्मेदार होते हैं या मुतासिर भी होते हैं। अगर और हकीकत बात क्या है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे मुंह से शुरू होकर पखाने की जगह तक एक मुकम्मल एक सिस्टम है। इसमें अगर मरीज को

0: मिसूर बि थिए थो ऐं भर्ती बि थिए थी, मतिलबु पेट भरिजी थो वञे।
1: तकलीफ़ हो रही होती है और उस पॉइंट को जब हम नोट करते हैं तो फिर एज ए डॉक्टर जब हम उसे कंसिडर करते हैं तो पता चलता है कि आया ये मसला इसके मैदे का है। मैदे कनेक्ट होती है, जो हमारा पित्ता है उस पित्ते में से एक नाली निकल रही होती है जो कि इस जगह पर आके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ना कनेक्ट हो रही थी। इसके बाद छोटी आंत होती है। अब मरीज़ को किस जगह पे तकलीफ़ हो रही है, खाना खाने से पहले होती है यानी खाली पेट में तकलीफ़ ज़्यादा होती है, खाने के बाद ज़्यादा होती है। अक्सर लोग जो है ना वो ये सवाल करते हैं या उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो टेस्ट नहीं करवाते। उसकी वजह ये होती है कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो है ना वो आपके एनाटॉमी को इतना समझ चुका होता है कि आपके जब मरीज़ हमारे सामने बात कर रहा होता है ना तो मरीज़ की बीमारी को समझने के लिए जो हम सवाल कर रहे होते हैं, देखिए फ़र्ज़ करें कि आपको एक दर्द हो रहा है,
0: ठीक है,
1: तो हम आपसे जब पूछेंगे आपके दिमाग में क्या आएगा, मरीज डॉक्टर के पास जाओगे आप कहोगे भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये कह दिया कि मेरे मैदे में दर्द हो रहा है। लेकिन फिर उस दर्द की नौइयत कैसी है, आपको क्या महसूस हो रहा है, आपके एहसास को समझने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। एक मरीज ये कहता है कि भाई मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे मैदे को किसी ने चक मारा हुआ है।
0: हाँ, मैं चक लगो पियो
1: है। हाँ, ना? अब ये चीज है ना, ये तो आपको महसूस हो रही है ना, मरीज को महसूस हो रही है,
0: ठीक है।
1: अच्छा, एक मरीज ये कहता है ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पत्थर रखा हुआ है, कोई भारी सी चीज रखी हुई है। अब ये फीलिंग्स है। अच्छा, एक मरीज ये कहता है खाना खाया ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में गैस भर गई है, मेरा पेट डबल हो गया है। खवातीन ये कहती है कि खाना खाने के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा 7वें-8वें महीने की प्रेगनेंसी है, इतना पेट फूल जाता है। अच्छा, गैस हो गई, खाना खा लिया और वो बोझ बना हुआ है, ना पत्थर का एहसास है, ना गैस का एहसास है, ना जलन है, ना दर्द है, सिर्फ बोझ है। और क्या होता है कि 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद जो आपने खाना खाया होता है सिर्फ उसी की डकार आ रही होती है। अब ये फीलिंग्स हैं, इन फीलिंग्स को अलग अलग मरीज, हर मरीज जो है ना वो अलग तरीके से बयान करे, अपनी फीलिंग्स को बयान करेगा,
0: ठीक है।
1: उस फीलिंग को कंसीडर करके हमारा जो होम्योपैथी है, जो होम्योपैथी की फिलासफी है, वो मरीज को अंदर से समझ जाती है। इसलिए हमें टेस्टों की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, बहुत कम पड़ती है ना। जब मरीज़ से हम बातचीत करते हैं तो वो मरीज़ के दिमाग में ना एक सवाल आता है, वो कहता है इसने तो मुझे चेक नहीं किया, इसने तो कोई टेस्ट ही नहीं करवाया, इसने तो एक्सरे नहीं लिया, ये इसको पता कैसे चलेगा कि भाई मुझे क्या हो रहा है। तो जो हम सवालात कर रहे होते हैं, जो हम उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमारे क्वेश्चन जो है वो होते ही इसीलिए हैं कि हम मरीज़ की कैफियत को समझ रहे होते हैं, और इसी कैफियत को समझना, इसी एहसासात को समझना एक अच्छे होम्योपैथ का काम है। और उसके बाद जब होम्योपैथ मेडिसिन देता है तो फिर उसकी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाती है
0: जी।
1: तो ये खातून जो है इनसे भी मैं ये कहूँगा कि मैदे के लिए जो आमतौर पर मैं एक बात बताता हूँ कि सौंफ और अजवाइन का इस्तेमाल करें, ये तो बहुत उम्दा ग़िज़ा है जो हमारे जिस्म को, हमारे मैदे को बहुत अच्छी ताकत तवानाई देता है, वो इस्तेमाल करें। और चूंकि इनको बहुत अरसे से तकलीफ़ हो रही है तो इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इनको आना चाहिए क्लिनिक पे ताकि इनसे मुकम्मल केस हिस्ट्री ली जाए और फिर उसके मुताबिक इनको जो है हम कुछ मेडिसिन देंगे। इंशाल्लाह ताला इनके मैदे की तकलीफ़ भी ठीक होगी, मैदे की तो मैं नहीं कहूँगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की तकलीफ़ जो है वो भी ठीक होगी, और इनके जो दर्द वगैरह हो रहे हैं वो भी, दोनों मियाँ बीवी को जो है ना अलग अलग मेडिसिन की ज़रूरत होगी और दोनों इंशाल्लाह ताला
0: ठीक ठाक
1: शिफायाब होंगे।
0: अदा करीब इश्क जी आए तो तुम अचो सुभाने डॉक्टर साहब पंहिंजी क्लिनिक ते मौजूद हूंदव। डॉक्टर साहब इस्लामाबाद खां वापसि अची चुका आहिनि, सुभाणे 9 वॻे खां वठी शाम जो 5 वॻे ताईं मोरो वारी क्लिनिक आलमाणी मेडिकल सेंटर साम्हूं बाईपास टाउन दादू रोड मोरो ते मौजूदु हूंदा। अचण खां पहिरियां नंबर तव्हांखे मां ॿुधायां थो, हुन नंबर ते कॉल ज़रूरु कजो 0 340 40 40 217। नंबर नोट करियो 0 340 40 40 बस 100 यो नंबर है आई उनसा करो करे यो ही सागियो नंबर जेको तहा प्रोग्राम में डायल करे असने कॉल की हुई ते प्रोग्राम जे लाए भी यो ही सागियो नंबर आए इन नंबर ते कॉल करे त डॉक्टर साहब का बीमार जे बोतल के मालूमात पण वठी सको दा ससा करे एक कॉलर आए हलो कॉलर तरफ अस्सलाम वालेकुम मोलाली मदद दादा केर गलायो था किथा गलायो था
2: गुलाब
0: टंग में सूर थो थे टंग सही तरीके से कम नथी करे छा थो मसलो थे
2: टंग थोड़ो कम घट थे करे ने करे टंग पे एकड़ी बा
0: अच्छा हाँ तान नानी जी उम्र कितनी है
2: उम्र 50-60 साल थी ना सर
0: बी का तकलीफ था सर शुगर वगैरह या बी का बीमारी
1: नहीं हुआ
2: सर वो जो थे दिल जो बाईपास चला होते सेवन में कराया थी
0: सेवन में दिल जो बाईपास सेवन में नथिन हुआ एंजियोग्राफी वगैरह कराई है
2: जी जी वो आप कराया सर
0: अच्छा ठीक है यो बुदा जो फालिज जी तकलीफ तो नथी है सर
2: ये फालिज जो नमूनो थे तो ये थोड़ो महसूस थे असा के
0: अच्छा ब्लड प्रेशर किया रहा दो था
2: वो सर दवा बावटों का दादर मना जा को फर्क ना है मिलो
0: ब्लड प्रेशर किया हूँ दादा
1: न्यूरो सर्जन को दिखाया
2: ब्लड प्रेशर सही हूँ
0: के दिमाग जे डॉक्टर के दिखा रहे हो था वादा
2: जी ना
0: दिमाग जे के डॉक्टर के दिखा रहे हो आए
2: दिमाग जे दिखा दिमाग को मसले को ने टेस्ट बेस्ट वार से क्लियर हो पेट भर जी तो ने मजो
0: तवा दिखा रहे हो आए उनके
2: जी जी
0: अच्छा ठीक आया था ठीक आए बड़ी मेहरबानी
2: पेट
0: भर जी तो वने था हाँ एकड़ी तकलीफ था तो पेट भरजन जी बी तकलीफ था तो टंग घट कम थी करे टी तकलीफ था तो फालिज जी चौथी तकलीफ था तो उनके ब्लड प्रेशर जी यही उन्हें कापू दिल जी तकलीफ भी था
2: दिल जी तकलीफ आया था तो उन्हें सही थी भैया
0: हेलो ठीक आया था ठीक आया डॉक्टर साहब का पूछी था वो बड़ी मेहरबानी भावजा अच्छा डॉक्टर साहब ये 65 ईयर एज है इसकी नानी की और उसे पेट की तकलीफ है पेट में दर्द हो रहा है उसके बाद टांग में जो है ना वो कम काम कर रही है उसके बाद दिल का भी उन्होंने इलाज करवाया है एंजियोग्राफी किया इसने कहा कि हमने बाईपास करवाया है तो पता नहीं बाईपास या एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करवाया है कोई बात क्लियर नहीं है ब्लड प्रेशर का भी मसला है दिमाग के डॉक्टर को दिखाया है वो कहते हैं कि दिमाग की हालत इसकी बिल्कुल ठीक ठाक है और पेट भी भर जाता है
1: पहले जो है ना जो सबसे खास मसला है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है इसके बाद देखा ये जाएगा कि इनको दिल का कोई मसला है आर्जा है कि नहीं ना और दिल के आर्जे के साथ साथ जो है ना फिर ये देखा जाएगा कि इनको जो ये कमज़ोरी बता रहे हैं उस कमज़ोरी का मेन रीज़न क्या हो गया देखिए अक्सर औकात क्या होता है फालिज का असर हुआ होता है यानी फालिज हुआ होता है लेकिन बहुत माइनर कंडीशन में ना बहुत माइनर मामूली सा और उसी के बुरे असरात सामने आ रहे होते हैं जिस्म का कोई हिस्सा कोई साइड जो है वो ज़रा कम काम कर रही होती है ताकत उसमें कम हो जाती है अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये एज फैक्टर है अगर एज फैक्टर होता तो जिस सारे का सारा जिस्म जो है वो मुतासिर होता है एक जैसा होता है लेकिन चूँकि ये एक साइड बता रहे हैं एक टांग है और एक बाजू है तो दिमाग इस तरफ जाता है हमारा माइंड इस तरफ जाता है कि माइनर पैरालिसिस अटैक इनको हुआ है और उसके पीछे रीज़न यही होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होना अब ये कह रहे हैं साथ में कि भाई दिल दिमाग के डॉक्टर को दिखाया है न्यूरोसर्जन एक्चुअली न्यूरोसर्जन का काम है वो ये चेक करता है कि आया आपके जो दिमाग और दिमाग से निकलने वाले न्यूरॉन्स और न्यूरो जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है वो दुरुस्त हालत में है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है कि नहीं और अगर इसमें कोई नुक्स पैदा हुआ हो तो उसकी वजह से हमारे जिस्म के ऑर्गन्स मुतासिर होते हैं यानी पैरालिसिस जैसी कंडीशन जो है वो आ सकती है उसके लिए क्या है कि आपको जो है ना इस मरीज़ को न्यूरोसर्जन के पास लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है लेकिन अगर ये उससे आ चुके हैं चेकअप करवा चुके हैं उन्होंने कहा कि भाई इनको ना तो स्पाइनल कॉर्ड में मसला है और ना ही दिमाग का कोई मसला है, तो फिर हम इनकी जाहिरी कैफियत के हिसाब से इनका जो है ना ट्रीटमेंट करेंगे, और इनकी सेहत जब तक ये मरीज़ सामने नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते कि इसको क्या ट्रीटमेंट दी जाए। लेकिन मैं इनसे ये कहूँगा कि इनको एक तो वॉक करनी चाहिए, वॉक बहुत ज़रूरी होती है रात के खाने के बाद, और सुबह को निहार मुँह, ये बहुत ज़रूरी होती है। ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादातर बैठ जाती हैं घर में, बैठी रहती
0: वगैरह नहीं करती हैं
1: बिल्कुल ना, और रात के खाने के बाद।
0: और तो ये उम्र के हिसाब से तो जाहिर है इनके लिए वाक भी मसला होता होगा ना।
1: देखिए मैं एक हकीकत बयान करूं, हम मेडिकल में हम बहुत सारे लोगों के जो है ना जायजा लेते रहते हैं, हर चीज को जो है हम काउंटिंग में रखते हैं और हर चीज को हम नोट करते हैं कि भाई आया इस काम से क्या हो रहा है, इस काम से क्या हो रहा है, कौन सा मरीज कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था, उसका लाइफस्टाइल कैसा था, और आज उसके जो जिस्म में बीमारियां मौजूद हैं उन बीमारियों के पीछे क्या वजूहात हैं। आप देखें इस वक्त इंटरनेट पर बहुत आम हो गया है, हम जो है ना वो जो रील्स देख रहे होते हैं,
0: हाँ।
1: मेरे पास मैंने जो सिलेक्शन की हुई है उसमें ज़्यादातर मेडिकल की रील्स आती हैं। एक खातून के बारे में मैंने देखा कि भाई वो खातून 52 इयर्स एज है और उनकी जो बेटी है वो उनसे तकरीबन 20 साल छोटी है।
0: ठीक,
1: वो खातून अपनी बेटी की बिल्कुल हम उम्र नज़र आती हैं और एक्सरसाइज कर रही थी, तो माँ की एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी थी बनिस्बत बेटी के। अब क्या ख्याल है, मतलब 20 साल के फर्क के साथ
0: हाँ, यानी कि वो 30 की होगी वो 50 की है,
1: हाँ, है ना, तो बेटी जो है वो कमज़ोर नज़र आ रही है और एक्सरसाइज करने में पीछे पीछे हो रही है, और वालदा जो है वो बेहतरीन है, सेहत में भी अच्छी है। अब जो हमारी सेलिब्रिटीज होती हैं ना, जो मीडिया पर जो ख्वातीन आती हैं, जो
0: हाँ, बिल्कुल,
1: आप उनको देखें एक्टर्स हाँ। जो हैं आप उनको देखोगे कि भाई बहुत ज़्यादा उम्र की होने के बावजूद उनकी सेहत बरकरार होती है।
0: बिल्कुल सही,
1: आपको पता है कि उनकी सेहत क्यों बरकरार होती है, इसलिए कि उनकी डेली रूटीन में एक्सरसाइज मस्ट है,
0: मस्ट है, वो बड़ा ख्याल रखती है
1: बहुत ज्यादा ना। आप उनको देखेंगे कि भाई वो जब एक्सरसाइज कर रही होती है तो जब उनका दिन गुजरता, दिन की जो डेली रूटीन जो है उसमें एटलीस्ट अगर बहुत कम भी हो ना तो 1.5 से 2 घंटा एक्सरसाइज वो करती है।
0: बिल्कुल सही,
1: और मैं मरीजों को कहता हूँ कि भाई आप 1.5-2 घंटा छोड़ो, आप आधा घंटा करो,
0: 15 मिनट करो यार,
1: हाँ आप करो तो सही ना। अच्छा एक्सरसाइज का क्या होता है, एक्सरसाइज हमारे जिस्म के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ऐसे तेज कर देती है कि वो जिस्म में मौजूद फासिद मादे जो होते हैं, जो हमारे जिस्म में गंद कचरा जगह जगह जमा हो रहा होता है, वो
0: उसको निकाल के बाहर फेंकती है,
1: निकाल देती है, साफ कर देती है।
0: जी हाँ बिल्कुल, अदा हाँ मसरूर इन आए थे डॉक्टर साहब तवे एक तो यह सलाह दिनी आए थे तीन दादी नानी के कें न्यूरोसर्जन के दिखारो, न्यूरोसर्जन अस उनके चाहूँ जो दिमाग जो डॉक्टर हो जाए, अगर तुम दिमाग के डॉक्टर के दिखारो आए दिमागी हालत उनकी बिल्कुल ठीक ठाक है तो डॉक्टर साहब जिन चवण है तो उनके वी अचो आलमानी मेडिकल सेंटर सामू बाईपास टाउन दादू रोड मोड़े।

0: भई पर ई मसलो न पियो हले।
1: अच्छा लौंग पुसाए इन मैदे जे लाई पियंदो हो?
0: जी मैदे जे लाई।
1: आई ताजे वाले जी उम्र केतरी आया था?
0: तकरीबन 60 साल थी जी।
1: अच्छा 60 साल उम्र अथस। बी का तकलीफ शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल जो को मसलो या दिमागी को मसलो है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह को मसलो को न
1: वाक वगैरह कदो आए निकरंदो आए बाहर घर का?
0: छा
1: छा मां वाक वगैरह कदो आए घर का बाहर निकरंदो आए?
0: हां घर का वगैरह बाहर कम कार अल्हम्दुलिल्लाह फिट।
1: अच्छा ठीक है, सिर्फ हाने बात पड़ने।

की कोई तकलीफ होती है जिसकी वजह से उनका मुंह पकता है। एक महीना हो गया है, जाहिर सी बात है इस एक महीने में इन्होंने मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल की होंगी लेकिन इनको फ़ायदा नहीं हुआ है।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध से हमारे हिंदू भाई और मसीही भाई गए, मुझे आज वो बहुत याद आए कि काश अगर वो आज इस धरती पर मौजूद होते, मैं देखता कैसे लाहौर का एक बिजनेसमैन खड़े होकर इस मां धरती को तकसीम करने की बात करता है। वो सिंध का हिंदू, वो सिंध का मसीह आज इस मुसलमान के साथ मिलकर उसकी बुद्धि जब्त से खींचता उसकी जबान।
2: तो सिंध की जोग्राफिया हदूद है वो वही रहेंगी, बॉर्डर चेंज नहीं हो रहा।
3: यहाँ पर आप कितने सूबे बनाएंगे, 12, 10, 15? सर जो 4 हमारे सूबे हैं उसकी आवाम ने जो अपना वोट डाला था 2024 में, वो तो हक उनको मिला नहीं।
4: थरपारकर को सूबा बनना चाहिए, भाई मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। ना थरपारकर को होना चाहिए, ना कराची को सूबा होना चाहिए। मैं तो इस बात से मुत्तफिक हूँ, एक गवर्नेंस का बेहतर निजाम होना चाहिए।
5: सिंधी असेंबली में 9 सूबा ने इंतजामी यूनिट्स बाबत रिथ ते बेदी भी बहस। सैयद नासिर सैन शाह चयो त सिंधड़ी ते सिर केर नदींदो सहंदो केर मयार, सिंध विराईंदे समझी विया हूंदा। अचो गॾिजी सिंधू देश ऐं जिनापुर ख़िलाफ़ क़रारदाद मंज़ूर कयूं। जिते सूबा ठाहिण जी क़रारदाद मंज़ूर थी उते भली सूबा ठाहियो, पहिरीं उते तरक़ी थिए पोइ असांखे अची चवजो त तव्हां तरक़ी खां रहिजी विया। जमील सुमरो चयो त पहिरियां कराची खे वफ़ाक जो हिसो बणायो वियो ऐं पाकिस्तान ठाहींदड़ जयम सैयद खे अवां गद्दार ठाहे छॾियो। सिंध रुगो हिकु नक्शो न पर धरती, तारीख़ी ऐं आइनी वहदत आहे। MQM जे मेंबर इफ्तिखार आलम चयो त इंतज़ामी यूनिटनि जी बहस खे रुगो सियासी नारे तौर न पर इंतज़ामी सुधारनि तौर ॾिसणु घुर्जे। PTI जे सजाद सुमरो चयो त ब अस्पताल संभाले न सघंदड़ वफ़ाक कराची खे पंहिंजे हवाले करण जी ॻाल्हि थो करे। इम्तियाज़ शेख चयो त पाणी ऐं ज़मीन सिंध लाइ रेड लाइन आहिनि। पाणी ऐं ज़मीन जी विर्छ जी ॻाल्हि कई वई त भरपूर मज़ामत कई वेंदी। MQM जे तहा अहमद चयो त पीपल्स पार्टी पंहिंजे मेयर खे बि इख़्तियार न पई ॾिए ऐं जे आर्टिकल 140A ते ॻाल्हाइण ग़लति न आहे। डॉक्टर सोहराब सरकी चयो त जंहिं तरीक़े सां MQM जे मेंबरनि ॻाल्हि कई आहे उन मां लॻे थो त हू सिंध जो विरागो नथा चाहिनि। TP जे एजाज़ सवाती चयो त हिंदुस्तान लॾे वियल हिंदू ऐं ईसाई हिते हुजनि हा त सिंध विराइण जी ॻाल्हि कंदड़ वापारियुनि जी ज़बान चिके कढनि हा। सिंध हुकूमत पारां लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीमनि ते गौर। परे वज़ीर तरमीमनि जो जाइज़ो वठण लाइ सूबाई वज़ीरनि ते ॿधल कमेटी जोड़े छॾी। सीनियर वज़ीर शजील नामेवर, नासिर शाह, सईफ खानी, जालंजार, नजमी आलम ऐं सलीम बलोच कमेटी में शामिल। परे वज़ीर मुरादरी शाह

0: सूबाई असेंबली जो वक्त जा रहा
1: मुशरफ
0: कहिड़ा मन सुञाणा
1: कंहिं जो प्रेशर आहे तव्हां ते या इस्लामाबाद जो प्रेशर आहे दिल्ली जो प्रेशर आहे कंहिंजो प्रेशर आहे निज़ाम अचानक एमरजेंसी में मीटिंग छो कॉल कई वई काबीना जी ऐं रिफॉर्म खां
0: प्रेशर जेकॾहिं हुजे हा त असां हीअं न ॻाल्हायूं
2: जेकॾहिं कंहिंखे लॻे थो त सिंध में डिवीजन्स घटि आहिनि ज़िला घटि आहिनि त हुन ॻाल्हि त थी सघे थी न ज़िला ठाहे सघजनि था डिवीजन्स वधाए सघजनि था
3: सिस्टम फेल थी वियो आहे जेको चवे थो त उनखे महिरबानी करे इस्तीफ़ा ॾियणु खपे जन पोइ सिस्टम में पाण आहियूं बरोच पर सिंधी आहियूं सिंध में रहूं था सिंध सां मरंदासीं सिंध सां जीअंदा
4: हुनखे वधीक एम्पावर करणु खपे ताकी लोकल माण्हुनि जा मसला हल थियनि सी एम साहिबु कमेटी ठाही आहे सुठी ॻाल्हि आहे ऐं मां सम्झां थो त उहो हिकिड़ो पॉज़िटिव क़दम आहे ऐं हीअ जेके मसला मसाइल हलनि था सूबे जे हवाले सां पंहिंजे हवाले सां उन्हनि जो हल बि हिते ई निकिरंदो
5: शरफ वारो दौर बिल्कुलु बहाल नथो थी सघे
6: त जेके चेयरमैन आहिनि या मेयर्स जेके आहिनि उहे कंटिन्यू कंदा जेसिताईं नई इलेक्शन थिए उहो ज़रूरु थियो आहे बाक़ी कुझु जेके अमेंडमेंट आहिनि उहे असेंबली में ईंदियूं स्टैंडिंग कमेटी में वेंदियूं स्टैंडिंग कमेटी जेके रिकमेंडेशन कंदियूं
7: छा सिंध में अॻूणे आमिर परवेज मुशवर वारो मकानी निज़ाम बहाल थी रहियो आहे केटीएन न्यूज़ जो सिंध काबीना जे मेंबर्स ऐं एनपीएस खां सवाल निसार खोड़े चयो आहे त मुशरफ खे नथो सुञाणा सूबे लाइ सिंध असेंबली को बि निज़ाम जोड़े सघे थी कंहिंजो बि दॿाउ नाहे निज़ाम जी बहितरी लाइ केरु चवे थो त एतिराज़ न हुअणु घुर्जे सूबाई वज़ीर सईद ख़ानी चयो आहे त सिंध में को बि पुराणो मकानी निज़ाम न ईंदो मकानी कानून में तरमीमनि जी ॻाल्हि थी रही आहे निज़ाम तब्दील न थींदो सिंध में डिवीजन्स या ज़िला वधाइण वारे मामले ते ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी एम पी एस सरदार चांडियो चयो त निज़ाम खे नाकाम छॾींदड़ गरु वज़ीर जी कुर्सीअ ते छो वेठो आहे मोहम्मद बख्श मेहर चयो त मकानी निज़ाम ते वधीक मुशावत थींदी को बि दॿाउ नाहे राजा रज़ाक चयो त निज़ाम तब्दील न पियो थिए सुधारा अचणु घुर्जनि मोहम्मद अली मलकाणी चयो त मुशरफ वारो मकानी निज़ाम न ईंदो
8: Water is the lifeblood of our region. It sustains millions of lives, nourishes our lands, and secures the very future of our coming generations. It must never be weaponized. It cannot be used as an instrument of coercion, nor can it ever be exploited for political leverage. The treaties governing our shared waters are solemn binding international commitments. They are not matters of political conveniences to be cast aside at your will. They must be honored unconditionally in both.
9: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

रहे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस
1: बन गई अगर चौथो नजर तिरछी की तो अदा बन गई माते पहजो एक्सप्रेशन अवां के देखाए कोन तो सगा अवां जरे के शरारती बार के या के प्यारे मानू के कहे मर्द के न चमक के छोकरी के चाकार त ये अदाऊं सुहन थू छोकरन के सो उए नाटी अंदाज में निगाहों के हेदा खा होदे राइट एंड लेफ्ट फेराइंगियन तो उनके चयो दुआ त नगर नजर तिरछी की तो अदा बन गई वरी चयो तो नजर फेर ली तो कजा बन गई मगर जे करे मतलब उनो मतलब आ त जे करे कह खा कह जो प्यारो मुंह मटे छरे चेहरो फेराए छरे नजरो फेरे छरे तो उन जे लाए त कजा थी कजा मतलब मौत अची गई

जिन दोस्तों असाके ही ट्यून कराया है उन्हें के वंस अगेन वेलकम भलीकार खुशामदीद चौंता प्रोग्राम दिल जी गाल नमक हां यारे मगे ताई अवां सा गड हुंदो असा अवां के पजो कॉलिंग नंबर बुधायो था असा जो लाइव कॉलिंग नंबर है 03-000-11-3488 इनते कॉल करे अवां पजे दिल जी गाल करे सकोदा अजो को जो असा जो टॉपिक रहंदो अवां सा अवां जे दिल जी गाल करण लाय बुधण लाय अवां जो तारुफ थिंदो अवां सा गाल बोल भी थिंदी असा नंडी नंडी असा जी अवां का फरमाइश हुंदो अवां जी फरमाइश जो प्रोग्राम में शामिल हुंदो अजो को असा जो टॉपिक आ है त छा शायरी वसीले पंजी दिल जी गाल बे तई पहुंचा सकजे थी आई शायरी असा जो मुआशरे ते केड़ो जो किरदार आए शायरी केड़ो पंजो अक्स छड़े थी शायरी जी कंट्रीब्यूशन छाए असा जे मुआशरे में इन ते गाल बोल थिंदी शायरी आए छा शायरी जो कंट्रीब्यूशन असा जे मुआशरे में छाए छा शायरी वधिक मां कोन तो चवा त छा शायरी वो अवे बुधाइंदो तो शायरी आए छा आ शायरी जी कंट्रीब्यूशन असा मुआशरे में आए छा सो आ जो अजो को टॉपिक यो है बाकी उन खा एंड में असा जो कोन को हकरो मैसेज हु दो अवा दोस्तन जे मैसेज आ सुठा कोटेशंस वो मैसेज वसीले भी असा के अवा उमाड़े सको था लाइव कॉलिंग ते भी असा सा गद फीडबैक दई सको था लाइव कॉलिंग जो नंबर मा वंस अगेन रिपीट कर दो वाला 03-000-11-3488 इने ते कॉल करे अवा असा सा पहजे दिल जी गाल करे सको था

अवां के थोरो घणो डिस्क्राइब करण जी कोशिश कंदुमि, लेकिन असांजो अॼोको जेको प्रोग्राम आहे उहो टोटली डिपेंडेंट रुगो हिन हिकिड़े शेर ते न आहे। उन में खोड़ सारी शामिल आहे शायरी, अवां जे दिलि जूं ॻाल्हियूं शायरी वसीले, गीतनि जी झूंगार वसीले। छाकाणि त मूं अॻु में बि चयो त शायरी अवां जे लफ़्ज़नि खे ख़ूबसूरत जेको आहे त हिकिड़ो लिबास ॾेई करे अवां जे महबूब ताईं, अवां जे प्यारे ताईं पैगाम जी सूरत में पहुचंदी आहे। असां जॾहिं रब ॾे गुफ़्तगू करणु चाहींदा आहियूं, ॻाल्हि ॿोल करणु चाहींदा आहियूं, त निगाह मथे हली वेंदी आहे डायरेक्टली हूअं त रब दिलि जे वेझो आहे, बिल्कुलु तमामु हर हिक जे दिलि में रहंदो आहे, वेझो आहे। पर असां हिकिड़ो तसवुरु आहे त मथे ई सतह ॾे ॾिसंदा आहियूं। उनखां पोइ जेकॾहिं हया जी ॻाल्हि कजे त उहो अखियूं झुकाए छॾंदा आहियूं। तॾहिं शायर चयो त निगाह नीचे की तो हया बन गई, ऐं वरी चए थो नज़र तिरछे की तो अदा बन गई। मां हिते पंहिंजो एक्सप्रेशन अव्हांखे ॾेखारे कोन थो सघां। अव्हां जॾहिं कंहिं शरारती ॿार खे या कंहिं प्यारे माण्हूअ खे, कंहिं मर्द खे न चवां, कंहिं छोकिरीअ खे, छाकाणि त इहे अदाऊं सुहनि थियूं छोकिरियुनि खे, सो उहे नाटी अंदाज़ में निगाहुनि खे हेॾां खां होॾे राइट एंड लेफ्ट फेराईंदियूं आहिनि, त उनखे चयो वेंदो आहे त नगर नज़र तिरछी की तो अदा बन गई। वरी चए थो नज़र फेर ली तो कज़ा बन गई। मगर जेकॾहिं मतिलबु उनजो मतिलबु आहे त जेकॾहिं कंहिंखां कंहिंजो प्यारो मुंहुं मटे छॾे, चहिरो फेराए छॾे, नज़रूं फेरे छॾे, त उनजे लाइ त कज़ा थी वई, कज़ा मतिलबु मौत अची वई।

जिन दोस्तों असा के हिं ट्यून किया है उनके वंस अगेन वेलकम भलीकार खुशामदीद चौं था प्रोग्राम दिल की गाल नमक हाँ यारे वगे ताई अवां सा गड हुंदो असा अवां के पैजो कॉलिंग नंबर बुधायूं था असा जो लाइव कॉलिंग नंबर है 03-000-11-3488 इन ते कॉल करे अवां पैजे दिल की गाल करे सको था अजो को जो असा जो टॉपिक रहंदो अवां सा अवां जे दिल की गाल करण लाए बुधण लाए अवां जो तारुक थींदो अवां सा गाल बोल भी थींदी असा नंडी नंडी असा जी अवां का फरमाइश हुंदो अवां जी फरमाइश भी प्रोग्राम में शामिल हुंदो अजो को असा जो टॉपिक आहे त छा शायरी वसीले पंहिंजी दिल जी गाल बे ताई पहुंचाए सकजे थी ऐं शायरी असां जो मुआशरे ते कहिड़ो उनजो किरदार आहे शायरी कहिड़ो पंहिंजो अक्स छॾे थी शायरी जी कंट्रीब्यूशन छा आहे असांजे मुआशरे में इन ते ॻाल्हि ॿोल थींदी शायरी आहे छा शायरी जो कंट्रीब्यूशन असांजे मुआशरे में छा आहे छा शायरी वधीक मां कोन थो चवां त छा शायरी उहो अवां ॿुधाईंदो त शायरी आहे छा ऐं शायरी जी कंट्रीब्यूशन असांजे मुआशरे में आहे छा असांजो अॼोको टॉपिक इहो आहे बाक़ी हुन खां एंड में असांजो को न को हिकिड़ो मैसेज हूंदो अवां दोस्तनि जे लाइ मैसेज ऐं सुठा कोटेशन्स उहो मैसेज वसीले बि असांखे अवां उमाणे सघो था लाइव कॉलिंग ते बि असां सां गॾु फीडबैक ॾेई सघो था लाइव कॉलिंग जो नंबर मां वंस अगेन रिपीट कंदो वञा 03-000-11-3488 इन ते कॉल करे अवां असां सां पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि करे सघो था

0: बिल्कुल उहे त हाणे असांजा रूहानी मुर्शिद आहिनि, उहो लतीफ़ त हाणे मुर्शिद आहे न सिंधियुनि जो।
1: जी जी सर, शायरी उहा अॼोकी जी शायरी न आहे।
0: अॼोकी शायरी मुआशिरे में छा पैगाम ॾेई रही आहे, हुनजो किरदारु छा आहे मुआशिरे में?
1: सर हुनजो किरदारु अॼोकी शायरी जो कोई कोन्हे। शायरी जेका अॼु जूं चलनि उहे माशाला हुननि जो किरदारु आहे। तालिब मौला जी शायरी आहे, हुसन वारा न भेट करियो हसीन दिलबर अञा बि हुआ, बदन ते मखमल पोशाक पायो जवानी जोर अञा बि हुआ,
2: लिखिया
1: पर हाफ़िज़ कसर अञा बि हुआ, नमाज़ रोज़ा साबित रखिया पर अमाल बहितर अञा बि हुआ।